देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस में अयोध्या कांड का भाग 6। लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार।
1: इयम्।

0: समाचार प्रभात।
1: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा

0: विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान

0: डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग प्वाइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले

0: हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. in his address

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुशतरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई

0: दिल्ली में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल वसीले से आगाज किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है कि मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पुरएतमाद होना चाहिए और नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: मुनश्यात की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मूलगीर मुहिम के खाके का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने तफसील से बताया कि आने वाले हर इतवार को फन, सकाफत, खेल और ध्यान पर मबनी मखसूस सरगर्मियां मुनक़िद की जाएंगी ताकि नए शुरका की मुसलसल दिलचस्पी बरकरार रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते रहें। उन्होंने कहा कि आइंदा 100 इतवार नशे से पूरी तरह पाक भारत की समत में मुकम्मल तौर पर 100 मजबूत कदम बन जाएंगे।
1: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जिसके लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके में गुज़श्ता महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है। चुनाव कमीशन ने तीनों रियासतों में वोटों की गिनती के अमल को खुशअसलूबी से यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के आदाद शुमार के कौमी दफातर एनएसओ के सरबराहान का इजलास आज से कल तक लखनऊ में भारत की सदारत में मुनक़िद होगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: भारत की ब्रिक्स सदारत मरकजी मौजू इस्तेहकाम, इख्तिराक, तआवुन और पायदारी की तश्कील से इबारत है। ब्रिक्स के आदाद शुमार के शोबे में भारत ने मेयारी आदाद शुमार तब्दीली का मुहर्रिक का मौजू इख्तियार किया है, जो आदाद शुमार के आला मेयार, इख्तिराक, मालूमात की मौसर तरसील और अवाम पर मरकूज शुमारियाती निज़ाम के लिए भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस इजलास का मकसद ब्रिक्स के क्लीदी आदाद शुमार को मजीद मजबूत बनाना, कौमी शुमारियाती निज़ाम में इख्तेरा और इस्लाहात को फरोग देना, आदाद शुमार की इशात और आदाद शुमार तक रसाई को बेहतर बनाना, नीज माशी और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आदाद शुमार को मजीद मुस्तहकम करना है। इसका मकसद आदाद शुमार से मुतालिक मालूमात की इशात, शुमारियाती निज़ाम में इख्तेरा, नीज मालूमात और बेहतरीन तरीक़ेकार के तबादले के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत करना भी है। इजलास के साथ 2 निस्प रोजा ज़िमनी प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें इंतजामी आदाद शुमार की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा और तरक्की पजीर डेटा इको निज़ाम में मसनूई ज़हानत AI के लिए तैयारी जैसे मौजूद पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का आज से उड़ीसा का 3 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया कटक में करीपालू जगतगुरु यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी और कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिलों के तप्तापानी में तालीमी, सकाफती और दीगर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। पेश एक रिपोर्ट।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की अपनी आबाई रियासत के 3 रोजा दौरे के सिलसिले में आज से पहर भुवनेश्वर पहुंचेंगी। बाद में शाम को वो कटक के नजदीक बनारा में जगत गुरु किरिपालू यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी। वो कल भुवनेश्वर से बहरामपुर तक एक खसूसी ट्रेन से सफर करेंगी और बाद में गंजम जिले में तप्तापानी के लिए सड़क से रवाना होंगी, जहां वो माँ

0: कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मोहतरमा मुर्मू गोला बांधा में फौज के एयर डिफेंस कॉलेज में रात कयाम करेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की 40 पलटनों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया के दौरे के दौरान सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए बहरामपुर रेलवे स्टेशन, सदर जमहूरिया के सफर के रास्ते, तपता पानी मंदिर कॉम्प्लेक्स, फौज के एयर डिफेंस कॉलेज और दीगर मकामात को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। तवक्को है कि कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे ताकि भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में मजीद तरमीम की जा सके। इम्कान है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकर बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश करेंगी। आदाद और शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद के वजीर राव इंदरजीत सिंह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 2026 पेश करेंगे। इसी दौरान राज्यसभा में बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनतों की तरक्की का तरमीमी बिल 2026 आज पेश किया जाएगा। बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनतों के मरकजी वजीर जीतनराम मांझी बिल पेश कर सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसी करने वाले ममालिक के जरिए ईरान के साथ आज मुजाकरात होने वाले हैं। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने तस्दीक की कि दोनों मुल्कों के दरमियान राबते और बातचीत के जराये सरगर्म हैं। सर ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहद अरब अमारात, कतर और ईरान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन्होंने इस बड़े हमले को रोकने का फैसला किया जो पहले मनसूबाबंदी का हिस्सा था। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुस के इंतजाम व इंसराम के हवाले से एक मुआहदा तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक मुफाहमतनामे तक पहुंचने की तवक्को है। इसराइली मीडिया की खबरों के मुताबिक खित्ते के सालिसी करने वाले ममालिक गुज़श्ता माह दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस अहम समंदरी गुदरगाह को 60 दिन तक बगैर किसी फीस के खुला रखा जा सके। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इशारा दिया है कि ईरान और ओमान के दरमियान उस समंदरी राहदारी के इंतजाम के लिए मुश्तरक तरीकेकार से मुतालिक मुजाकरात अपने आखिरी मरहले में हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कल अमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में सिक्योरिटी के 5 अहलकारों समेत कम से कम 14 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाकया उस वक्त पेश आया जब सवात पुरअमन रैली सवात जिले में कबल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन महीने की पहली पीर के मौके पर आज भगवान महाकालेश्वर की श्रवण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्रमावलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पालकी निकाली जाएगी जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा।

शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गुदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी

0: कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोनकन, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरकी भारत के बाज इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे, जदीद फनून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। इसी तकरीब के जरिए 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के 7 साला एडिशन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज भी हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं के नुमाइंदे प्रिंस एडवर्ड्स ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान किया और तमाम शरीक ममालिक और खित्तों के खिलाड़ियों को अहमदाबाद आने की दावत दी। 11 रोज तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबलों के बाद भारतीय खिलाड़ी 39 तमगों के साथ ग्लासगो से वतन वापस लौटे। नई दिल्ली से मुजद्दीन खान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाइब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुनशियात के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करना चाहिए। मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राबता, खित्ते में जारी कशीदगी रोकने के लिए मुजाकरात पर दिया जोर, इस खबर को इनकलाब ने सफे अव्वल पर शाये किया है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में हुए जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज, सभी तैयारियां मुकम्मल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। रोजनामा इनकलाब की खबर है, उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से, कई अहम बिलों को पेश किए जाने की उम्मीद।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। निजी प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप शुभम कुमार के गायन में सुनेंगे राग नाद भैरव। तबले पर संगति दी है मुस्तफ़ा हुसैन ने और सारंगी में है गुलाम मोहम्मद।

Gama bama, gama bama, gama bama, gama bama, gama bama.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में आप सुन रहे थे शुभम कुमार के गायन में राग नट भैरव, तबले पे संगति दी मुस्तफा हुसैन ने और सारंगी में थे गुलाम मोहम्मद।

वहां कौन है? अंजा कीस्त या फारसी उमूमी अंजा किए? वहां कौन है? अंजा कीस्त? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? शुमा चिकोर मी कुनीत। वह क्या कर रहा है? ऊ चिकोर मी कुनात। आपके पास क्या है? आपके पास पीछे शुमा। आपके पास क्या है? पीछे शुमा चीस्त। वह क्या था? वह क्या था? अंचबूद। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? शुमो चिमिगुईद। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? शुमो चिगोफतीद। आपने क्या फरमाया? आपने क्या कहा? एहतरामन मिशवाद। आपने क्या फरमाया? यानी सरकार चि फरमूदीद। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? शुमा चेमी खाहिद। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? शुमा चिकोर खाहिद कर। क्यों? क्यों यानी चिरा। मैं वहां क्यों जाऊं? मैं चिरा अंजो बेरावाम। मैं चिरा अंजो रावाम। आप क्यों बोलते हैं? बोलना यानी हर्फ जदन। शुमा चेरा हर्फ मिजनीद। आप क्यों बोलते हैं? शुमा चेरा हर्फ मिजनीद। आप क्यों पूछते हैं? पूछना यानी पोर्सीदन। आप क्यों पूछते हैं? शुमा चेरा मी पोर्सीद। आप चुप क्यों हैं? चुप यानी खामोश। आप चुप क्यों हैं? शुमा चेरा खामोश हस्तीद। आप जवाब क्यों नहीं देते? चेरा जवाब नमी दहीद। आप जवाब क्यों नहीं देते? चेरा जवाब नमी दहीद। कब? कब यानी कै चे वक्त कै। मैं अब आऊं? मैं कब आऊं? मैं कब आऊं? कै भी आयाम चे वक्त भी आयाम। आप कब पधारेंगे? पधारना यानी तशरीफ आवर्दन। आप कब पधारेंगे? कै तशरीफ खाहिद आवर्द। कलमे एहतराम अस पधारना। आप कब लौटेंगे? लौटना यानी बरगश्तन। कई बार मी गर्दीद। कहां? कहां यानी खोजाओ। वह कहां है? उ खोजाओस्त। आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? शुमा खोजाओ मी रवीद। क्या हाल है? हाल शुमा चितौरास्त। हाल शुमा चीस्त। क्या हाल है? आपके पिताजी कैसे हैं? कैसे यानी चितौ। पिताजी यानी बाबा जान। पदार शुमा या बाबा जान शुमा चितौरास्त। आपके पिताजी कैसे हैं? आपकी माताजी कैसी हैं? मुअन्नस। माताजी यानी मादर। मादर जान शुमा चितौरास्त। आपके घर में तबीयत कैसी है? घर में यानी दर खाने इशारेस ब खानुम। आपके घर में तबीयत कैसी है? मिजाज खानुम शुमा चितौरास्त। हाल खानुम शुमा चितौरास्त। आप मुझे जानते हैं? आया शुमा मरा मी शनासीद। आपने सुना? आया शमा शनीदीद। क्या ठंड थी? ठंड यानी सर्द। आयो सर्द बूद। क्या यह खाने लायक है? खाने लायक यानी लायक खोर्दन या खोर्दनी। क्या यह खाने लायक है? आया इन खोर्दनी हैस्त। क्या यह ताजा है? आया इन ताजे हैस्त। ताजा हम मिगुयान तो ताजा हम मिगुयान। क्या ये ताजा है? आया इन ताजे हैस्त। क्या आप आ रहे हैं? आया शुमा तशरीफ मिया वरीद। आया शुमा मियाईद। आप मुझसे कल मिलेंगे? कल यानी फरदा। आया फरदा बहुमन मुलाकात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को

रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियों और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। और आज के अंक में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी कल्पना
1: और रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर।
1: तो दोस्तों कहते हैं ना, अगर मन में इंद्रधनुष देखने की चाहत हो तो भाई थोड़ी सी बरसात और थोड़ी दुश्वारियां भी देखनी पड़ती है। यानी जीवन में सफलता पाने के लिए रास्ते में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। और भाई कठिनाइयां होती है कल्पना, तो फिर याद आते हैं हमें भगवान। और आज सावन महीने का पहला सोमवार है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को सावन का जो मास है बहुत प्रिय है, और उनकी कृपा पाने के लिए लोग सावन के सोमवार का व्रत भी करते हैं।
0: बिल्कुल, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए मैंने तो देखा है कि पूरे सावन कांवड़िए भी लंबी लंबी यात्राएं तय करते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए वो अपनी मनोकामना पूरी हो इसलिए करते हैं। तो इसी से संबंधित है आज का हमारा प्रश्न भी कि श्रोताओं, जब आप व्रत या उपवास करते हैं तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? तो आपके जो जवाब हैं वो आपको हमें ईमेल करने हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो चलिए अब हम भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं इस भजन के साथ।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म से, जिसे गाया अमित त्रिवेदी ने, और भक्ति के बाद कुछ बात देशभक्ति की, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
1: जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां किसने नहीं सुनी होंगी कल्पना, है ना?
0: बिल्कुल, सबने ही सुनी होंगी। और भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध और पंचवटी जैसी महान कृतियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी की आज है जयंती, और उन्हें हमारी पूरी टीम की तरफ से सादर नमन,
1: श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं एफएम गोल्ड के स्टूडियो से। और साथ ही याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान गीतकार और उर्दू के प्रसिद्ध शायर शकील बदाउनी साहब को, चौदहवीं का चांद और प्यार किया तो डरना क्या, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, न जाओ सैया छुड़ा के मैया, और कहीं दीप जले कहीं दिल जैसे काल जई गीत उन्होंने लिखे। और 3 बार कल्पना उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और उनकी

0: दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे गंगा जमुना फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और अब हम बढ़ते हैं अपने ईमेल्स की ओर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही एक प्रश्न अपने श्रोताओं से पूछा था कि भाई आपको व्रत में क्या खाना पसंद है। तो हमारे श्रोता हैं कुछ, तो उन्होंने हमें ईमेल भेजा है। तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ ईमेल नवीन कुमार जी का।
1: भाटिया जी, नवीन कुमार जी
0: नवीन
1: का
0: कुमार, दो ईमेल
1: जी।
0: आए
1: जी
0: हैं एक नवीन कुमार जी हैं और एक नवीन भाटिया जी हैं। तो नवीन कुमार जी लिखते हैं कि नमस्कार, मैं नवीन कुमार आपका नियमित श्रोता, और आज के प्रश्न का मेरा उत्तर है कि उपवास में मुझे फल, मखाने और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन सबसे ज्यादा पसंद हैं। वे
1: जी
0: स्वादिष्ट भी होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, जरूरी तो नहीं है कि सभी का उपवास हो। तो मधु जी कह रही हैं, मधु किरण जागृति इनक्लेव दिल्ली से कह रही हैं कि मुझे तो सावन में बारिश होते हुए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय को जो है पीना और परिवार को खिलाना बहुत पसंद है। और साथ में एसपी गोयल, सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो वो कह रहे हैं व्रत में हल्का फुल्का फलाहार और दूध आदि लेना चाहिए, पर केवल इतना लेना चाहिए कि पेट को बिल्कुल पता भी ना चले। बहुत
0: बिल्कुल
1: अच्छी
0: ऐसे ही। देखिए,
1: बात
0: नवीन भाटिया जी ने भी यही बात कही है कि वो
1: जी।
0: जो है दूध तो लेते ही हैं, साथ ही वो सिंघाड़े के आटे से बने जो व्यंजन होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि उनका उपवास रहता है।
1: जी। और भाई सावन में प्रकाश गोगिया जी कह रहे हैं कि मुझे तो खीर घेवर बहुत पसंद है। भाई घेवर और सावन का तो हम कहेंगे चोली दामन का साथ है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ऐसे

0: हमें ईमेल करते रहें और हमें भेजते रहें अपने उत्तर fmgoldga@gmail.com पर। और
1: जी
0: अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी जानकारी भी आपको देनी ज़रूरी है श्रोताओं, क्योंकि रोज़ाना ही हम दिन विशेष की बात करते हैं, लेकिन ये जो पूरा सप्ताह है वो ही हम महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना है, क्योंकि वही बड़े होकर हमारे देश के भावी कर्णधार बनने वाले हैं।
1: जी, और साथ ही 3 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस, जिसका उद्देश्य प्रत्यारोपण के महत्व को समझना, अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अंगदाताओं और चिकित्सकों के योगदान का सम्मान करना है। और कल्पना, कहा भी गया है कि अंगदान महादान है ना, और जीवन दान, तो हम भी क्यों ना दिल बड़ा रखें और इस दिन के महत्व को समझें और अंगदान जैसी मानवीय पहलू से जुड़े।
0: बिल्कुल जुड़े, और साथ ही साथ एक मधुर सा गीत भी सुने हमारे श्रोता, 3 देवियां फिल्म से, जिसे गाया है लता।

0: और देखिए, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आखिरकार ख़त्म हो गए हैं और एक खूबसूरत सी क्लोजिंग सेरेमनी के साथ इन खेलों का अंत हो गया है। और इस क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लांबोरिया के पास रहा।
1: जी, और कल्पना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के 13 स्वर्ण पदकों सहित तो 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है, सभी पदक विजेताओं को उन्होंने बधाई दी है। और साथ में बेटियों ने, भारत की बेटियों का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन रहा।
0: बिल्कुल। और देखिए, इस पे मुझे एक शेर याद आता है
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल
0: तेरे माथे पे
1: इरशाद।
0: ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो ये सांचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
1: वाह वाह, क्या बात
0: और
1: है।
0: देखो ना, हमारे भारत की बेटियों ने न सिर्फ आंचल का परचम बनाया है, बल्कि भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो भारत की बेटियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।
1: जी, और आइए बात करते हैं भारत की उन बेटियों की। तो भाई, सबसे पहले वेट लिफ्टिंग की। मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, और साथ ही ज्ञानेश्वरी यादव ने भी रजत पदक जीता 53 किलोग्राम वर्ग में। और अस्मिता डे ने और यामिनी मौर्य ने जो है अस्मिता डे ने जो स्वर्ण पदक जीता, और यामिनी मौर्य ने फिर रजत पदक जीता। और फिर बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
0: बिल्कुल, बॉक्सिंग की बात करें तो भारत की बेटियों ने शानदार मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए देश को 5 स्वर्ण पदक दिलाए, जिनमें साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण जीतकर भारत को गौरवान्वित किया।
1: जी
0: पैरा एथलेटिक्स में भी शर्मिला धनकर ने महिला शॉट पुट PF57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि एथलेटिक्स में सीमा कालीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक और उपलब्धि जोड़ी है।
1: तो भाई कल्पना, इन सभी बेटियों ने अपने साहस, मेहनत और प्रतिभा से ये साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं आज विश्व खेल मंच पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। पूरे देश को अपनी इन बेटियों पर गर्व है, और इन पूरे खेलों के दौरान हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और जो समर्पण का जो परिचय दिया है, उनकी मेहनत हमारे युवाओं को निरंतर प्रेरित करती रहेगी।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे सीता और गीता फिल्म से, जिसे गाया मन्ना डे और आशा भोसले ने।
1: और यहाँ पर भाई खेलों के बाद जो खाने पीने की बात जो कर रही थी तुम, तो ख्याला से उमेश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं तो सावन में हमेशा नमकीन चीज़ें ही खाता हूँ, मुझे तो चाय पकौड़े बहुत पसंद है। और साथ ही मनोहर लाल गांधी जी कह रहे हैं विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से कि सावन के महीने में रिमझिम बरसात हो तो सबसे पहले काम बारिश के साथ गाने सुनता हूँ और साथ में भाई चाय पकौड़े हो जाए तो क्या बात है, नमस्कार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं रचना, सुमन, प्रियंका, मांगेराम, और वो कह रहे हैं नुहिया वाली सिरसा से कि हम तो व्रत के खाने के लिए आलू का हलवा और केला खाते हैं जी, आज हमारा सभी का उपवास है, वाह क्या बात है। और इसके अलावा हमारे पास एक और मेल आ गई है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो एक फरमाइश लिखकर भेजी है, मिस्कीन परिवार, विष्णु मिस्कीन, रितिका वाणी मिस्कीन और आवर मिस्कीन, लेकिन हम बता दें ये फरमाइशों का कार्यक्रम नहीं है, ये तो घर आंगन है, आपका अपना कार्यक्रम, आपका अपना घर आंगन, आपके परिवार का कार्यक्रम। तो जो हम सवाल पूछते हैं ना कि सावन में आपको क्या पसंद है, आज के दिन व्रत के उपवास के दिन क्या खाते हैं। एक और हमारे पास मेल आ गया है सत्य कार्सन ओटिया रोहिणी से, कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेमों में जो अभी हमने बात की थी ना कल्पना, उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई बेटियों ने ऐसा कमाल कर दिया, जीतकर सोना चांदी तिरंगा आसमान में लहराया और हर बाधा को पार कर रच दिया नया इतिहास, पूरे भारत का मान बढ़ाया और जगाया नया विश्वास। भाई वाह क्या कविता है। मुझे लग रहा है कल्पना कि तुम्हारी कविताओं से प्रेरित होकर हमारे श्रोता भी कहते हैं ना कवि बन गए हैं घर आंगन के प्यार में।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता सुनते रहते हैं तो कहते हैं ना कि असर होता है संगत का, तो बातों का विचारों का भी संक्रमण होता है, असर होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ईमेल एक और मेरे पास आया। अभी आप बोल रही थी कि आलू की बात कर रही थी कि भाई आलू का हलवा पसंद है, तो मुझे लगता है आलू के प्रेमी ज्यादा हैं। तो राधा शुक्ला जी लिखती हैं कि मुझे भी आलू बहुत पसंद है, आलू फ्राई बहुत पसंद है, लेकिन साबूदाना खिचड़ी भी मैं खा लेती हूँ, पर आलू मेरा बहुत प्रिय है, तो उन्हें आलू खाना बहुत पसंद है। और ऐसे ही प्रदीप खंडेलवाल भी लिखते हैं कि भाई हम तो खाने के लिए ही बचपन में उपवास किया करते थे।
1: क्या बात है ये बात भाई, उपवास करना और खाने की इच्छा होना ये दो अलग बातें, लेकिन हमारे श्रोता तो कुछ भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही। और देखिए एक और ईमेल है, गौरी शंकर वर्मा जी कहते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम, वैसे हफ्ते में एक दिन व्रत करना चाहिए, इससे शरीर ठीक रहता है। अब हम कितनी भी कोशिश करें कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन व्रत के बहाने आदमी खाता नहीं है, कमी खाता है, इसलिए शरीर को भी आराम मिलता है।
1: देखिए व्रत उपवास और त्योहार जो है वो हमारी संस्कृति में से ऐसे जुड़े हुए हैं और ये हमारे जीवन शैली का तरीका ऐसा है कि जो हम प्रसन्न भी रहें और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रसन्न रहें, खुश रहें। और साथ में सुदर्शन मुखी जी हमसे जुड़ गए हैं शांति नगर सोनीपत से, और वो कह रहे हैं उपवास में तो हम फल का

0: आहार लेना पसंद करते हैं, क्योंकि फल से शुद्ध और शुभ कोई हो ही नहीं सकता, शाकाहारी है आहार है तो आपको परिवार जो है वो सावन मास और जीवन बहुत सुख हो, शुभ हो और सुखद हो। कोटि कोटि धन्यवाद भाई, वाह क्या
1: बिल्कुल
0: बात है।
1: सही है। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और सावन के मौसम का आनंद लीजिए। फिलहाल तो ये प्यारा सा गीत सुनिए।

0: चा हवस्ती कह रही हैं कि आई लव साबूदाना की खिचड़ी, है ना,
1: वाह
0: खिचड़ी भाषा ही बोल दी उन्होंने आई लव। और साथ में सुनील प्रजापति वो कह रहे हैं कि भाई उपवास में ज्यादा मसालेदार खाना मैं अवॉइड करता हूँ और जहाँ तक हो सके तो फल ही खाता हूँ, तो अच्छी बात है। सुनील प्रजापति जी है पुणे महाराष्ट्र से, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए आप थोड़ा सा हल्का खाएं हैं और ऐसा खाएं कि भाई आप गतिशील भी रहें और आलस भी ना हो, है ना।
1: बिल्कुल सही बात कही। और देखिए, भोजन तो आप अपने शरीर के लिए लेते ही हैं, लेकिन जो पर्यावरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे वातावरण में रहते हैं, किस प्रकार का जो माहौल है जिसमें आप सांस लेते हैं, आपके आसपास कैसा मौसम रहता है, हरियाली रहती है या कूड़ा कचरा रहता है।
0: कहीं और लेकर जा रही हो तुम
1: तो बिल्कुल हम इस पर भी बात
0: जी
1: करेंगे कि भाई देखो, आजकल क्या है कि प्लास्टिक को हम बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, और वही किसी दिन कभी किसी स्कूल, पार्क या सड़क किनारे आपको आरामदायक बैठने की जगह भी बन सकता है। तो ऐसी ही एक उदाहरण की हम बात करेंगे। बिहार के सीतामढ़ी ने वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे को संपदा में बदलने की दिशा में एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, चम्मच और पैकेजिंग सामग्री को इकट्ठा कर उसकी रिसाइकलिंग की जा रही है, और इससे आकर्षक, मजबूत और टिकाऊ बेंच बनाई जा रही है।
0: यानी जो प्लास्टिक पहले नदियों, खेतों और कूड़े के ढेर में प्रदूषण फैला रहा था, वही अब लोगों के काम आ रहा है। वेस्ट टू वेल्थ यानी सिर्फ कचरे का निपटान करना नहीं है, बल्कि उसे एक नई उपयोगी वस्तु में बदलकर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करना है। और इस पहल से ना कल्पना बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। भाई जैसे प्लास्टिक प्रदूषण कम हो रहा है, कचरे का बेहतर प्रबंधन हो रहा है, और सार्वजनिक स्थानों के लिए टिकाऊ बेंच भी तैयार हो रही है, और रिसाइकलिंग उद्योग और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, पर्यावरण साफ सुथरा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात लोगों में रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल यानी जो 3 R हैं
1: जी
0: वो उसकी सोच मजबूत हो रही है।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल की सराहना मन की बात कार्यक्रम में की है, तो हमें अपने जीवन में इसे उतारने का भी संकल्प करना चाहिए। और ये बहुत आसान है, क्योंकि यदि हम अपने घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और रिसाइकलिंग की आदत अपनाएं, तो हम भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। देखिए हमें याद रखना है कि कचरा तभी तक कचरा है जब तक हम उसकी उपयोगिता को नहीं पहचानते। सही सोच और सही तकनीक से वही कचरा बन सकता है भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी। और जब कचरे का सदुपयोग होने लग जाए ना कल्पना, तो भाई रास्ते भी साफ सुथरे होंगे और पर्यावरण भी हरा भरा रहेगा।

0: दोस्तों ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे हाथी मेरे साथी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने
1: जी। और उपवास का जो हमने खाना पूछा था ना कल्पना, तो

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे आदमी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। और आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी मौसम के अनुसार कि भाई मुझे दो पंक्तियां याद आती, मैं सुना दूं
1: जी बिल्कुल।
0: कि बरसे सावन भीगे मन मुस्कानों की हो बौछार, रूठे रिश्ते फिर से महके मिट जाए हर तकरार।
1: भाई क्या बात है, आज सावन का सोमवार है। मैं देख रही हूँ तुम बिल्कुल सावनी सावनी हो रखी हो, और हरे रंग के कपड़े भी पहन रखे हैं सावन के अनुसार। और भाई क्यों ना
0: चूड़िया
1: हो, जी हाँ, हरी चूड़ियां भी हैं। भाई क्या बात है। तो
0: भी
1: भाई भोले बाबा के भक्तों के लिए तो आज का दिन बड़ा विशेष है। हमने गीत भी शुरुआत ऐसे ही किया था, लेकिन सावन की तो बात ही क्या है ना। तरह तरह के त्योहार आते हैं, तरह तरह के श्रावणी मेले लगते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। जब धरती पर सावन बरसता है तो दिलों में भी अपनापन खिल उठता है। सावन सिर्फ मौसम का नाम नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास का एहसास भी है। तो सबसे पहले देखो, इस बार की मैं बात करूं तो देश प्रेम के भाव भरता हुआ स्वतंत्रता दिवस आएगा, और वो हमें याद दिलाता है
1: जी,
0: कि देश के साथ हमारा रिश्ता कितना अनमोल है।
1: और पूरा माह जो है वो तरह तरह के त्योहारों से भरा हुआ है। हरियाली तीज आएगी, नागपंचमी आएगी, और रक्षाबंधन जैसे जो पावन पर्व है वो हमें याद दिलाते हैं कि रिश्ते जो है कल्पना केवल खून के नहीं होते, बल्कि प्रेम और विश्वास और समय के से भी बनते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपनों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन सावन हमें ठहरना सिखाता है, मिलना सिखाता है, मुस्कुराना, हालचाल पूछना और दिलों की दूरियां मिटाना सिखाता है। जैसे बारिश की फुहारें ना सूखी धरती को नई हरियाली देती है ना, वैसे ही दोस्तों प्यार भरे जो दो शब्द होते हैं और थोड़ा सा अपनापन जब मिल जाता है तो भाई रिश्तों में भी सावन आ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए इस सावन केवल पेड़ पौधों को ही नहीं, अपने रिश्तों को भी स्नेह, विश्वास और संवाद की बारिश से सींचे, क्योंकि रिश्तों की असली हरियाली दिलों के जुड़े रहने में ही है। और इस बात पर ये दो पंक्तियां और मैं अपने श्रोताओं के लिए कहना चाहती हूँ कि
1: जी
0: प्रेम भरोसे अपनेपन की रखें सदा पहचान, रिश्तों की हरियाली से ही खिलता है इंसान। तो आइए इस सावन सिर्फ धरती ही नहीं, अपने रिश्तों को भी स्नेह की फुहार से सींचे, यही है इस मौसम का सबसे
1: सुंदर संदेश।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत अभी आप सुन रहे थे पढ़ गए झूले बहू बेगम फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। देखिए, झूले पड़ते हैं तो झूला झुलाने वाला भी कोई चाहिए होता है, और फिर जब वो आता है झूला झुलाता है तो सावन का असली आनंद आता है।
1: जी, और एक मेल पढ़ देती हूँ। ये मेल हमें प्राप्त हुई है मयूर विहार से। सुरभि कह रही हैं कि उपवास का भोजन ऐसा होना चाहिए जो ऊर्जा दे, पचने में हल्का हो और लंबे समय तक पेट भरा रखे। तो वो कह रही है उपवास में जो कुछ लोकप्रिय व्यंजन और पौष्टिक भोजनों का उन्होंने नाम लिखकर भेजा है, कह रहे भाई साबूदाना खिचड़ी या कुट्टू के आटे की रोटी, दही के साथ आलू की सब्जी, सिंघाड़े के आटे का चीरा या हलवा, सामक के व्रत के चावल या खिचड़ी और पुलाव, भुने हुए मखाने, मूंगफली और दही, उबले और सेंधे नमक वाले आलू, ताजे फल जैसे केला, सेब, पपीता, अनार, दूध, दही, लस्सी और छाछ यदि आप व्रत में खा सकें तो, और नारियल पानी और नींबू पानी सेंधा नमक के साथ, वो कह रही हैं। और साथ में एक संतुलित मेन्यू उन्होंने बना के भेजा है। भाई सुबह थोड़े से भीगे बादाम और दूध केला ले लें, दोपहर में सामक की खिचड़ी, और शाम को अगर आपका मन करे तो थोड़ी सी आलू की सब्जी और कुट्टू की रोटी खा सकते हैं। तो बड़ा संतुलित सा उन्होंने बना के भेजा है। भाई इतने सारे व्यंजन, कल्पना तुम क्या खाने वाली हो?
0: मैं भी यही खाती हूँ। मैं एक्चुअली, मुझे भी आलू थोड़े से पसंद है तो मैं आलू खाती
1: लेकिन
0: हूँ।
1: हमारे श्रोताओं को तो गीत पसंद है।
0: श्रोताओं के गीत सुनाएंगे, लेकिन अब गीत सुनाने का आज हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि भाई बरसात का मौसम का आपको आनंद भी लेना है।
1: जी
0: गीत संगीत तो हमने सुनाया ही, लेकिन थोड़ी सी आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जैसे हम व्रत के उपवास के व्यंजनों की बात कर रहे थे, तो मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं तो मखाने और मूंगफली भी भून के रख लेती हूँ, उसमें
1: जी
0: थोड़ा सा नमक डालती हूँ सेंधा, और
1: हाँ
0: उसके बाद चाय के साथ उसका भी आनंद लेती हूँ। और
1: जी,
0: कई बार जो आलू होते हैं ना, उनको पतला पतला काट के तवे पर
1: आलू
0: घी
1: से हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा
0: घी लगा के
1: फलों की
0: वो
1: ओर
0: फ्राई
1: आते
0: करती
1: हैं,
0: हूँ।
1: है ना? और समय हो गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समवीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल

0: day through intermediaries. Speaking to reporters on board Air Force One, U.S. President Donald Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर. श्रोताओ, इस वक्त दिन के 1:10 हुए हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम एक ही फिल्म से. आज की जो हमारी फिल्म है वो 1949 में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म पतंगा की. ये वर्मा फिल्म्स द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी और ये 1949 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. तो श्रोताओं, करेंगे हम बहुत सारी बातें और फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ.
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: आरबीआई कहता है.
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: तो श्रोताओ, अभी जो वक्त है वो वक्त है हमारे कार्यक्रम एक ही फिल्म से. और इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. तो आइए शुरुआत करते हैं इस फिल्म के कुछ गीतों से और करेंगे इनसे जुड़ी कुछ तथ्यों कुछ बातें. फिलहाल सुनते हैं ये गीत इसी फिल्म से, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ों में.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारा जो आज का जो फिल्म है वो है पतंगा, 1949 में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म H.S. रवेल द्वारा निर्देशित की गई थी, जो उनकी पत्नी अंजना द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित थी। राजेंद्र कुमार, जो भारतीय सिनेमा के प्रमुख अभिनेताओं में से एक बन गए, पतंगा में निर्देशक H.S. रवेल के सहायक के रूप और फिल्म में एक कैमियो भी किया था।

0: WW2 की पृष्ठभूमि पर गाया गया युगल गीत जो कि आप सुनेंगे, मेरी पिया कई रंगून, जो अभिनेता गोप और मोहना केबरल पर फिल्माया गया था, वो बेहद लोकप्रिय हुआ। श्रोताओं, इस गीत के पार्श्व गायक सी रामचंद्र थे, जिन्होंने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया था, और शमशाद बेगम कलाकारों में थी निगार सुल्ताना, श्याम याकूब, गोप, पूर्णिमा, श्यामा, रणधीर और मोहना शामिल थे। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही लोकप्रिय गीत जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं।
1: हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करें तो ये कहानी याकूब, जो कि राजा के किरदार में है, उनके वो एक ट्रैफिक कांस्टेबल की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन अपनी नौकरी के दौरान निगार सुल्ताना यानी रानी नाम की एक स्ट्रीट सिंगर के गाए गाने से उसका ध्यान भटक जाता है और वह अपने ट्रैफिक स्टेशन से निकल जाता है। इससे एक गंभीर ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और राजा को बिना सैलरी के 1 साल के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। रानी राजा की मदद करने का फैसला करती है और दोनों को नाथा राम गोप के गोप थिएटर में एक्टिंग की नौकरी मिल जाती है।

राजा और रानी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक अमीर जमींदार का बेटा श्याम फिल्म में आता है। रानी को स्टेज पर देखते हुए श्याम को उससे प्रेम हो जाता है। इस तरह शुरू होता है क्लासिक लव ट्रायंगल, जो तब बनता है जब दो आदमी एक ही औरत से प्यार कर बैठते हैं।

इस लव ट्रायंगल को और मुश्किल बनाने वाली बात यह है कि राजा खुद को रानी को ये बताने के लिए मजबूर नहीं कर पाता है कि वह उसे प्यार करता है और दोस्ती से ज़्यादा कुछ चाहता है। इस लव ट्रायंगल को और मुश्किल बनाने वाली बात यह है कि शाम की पहले से ही पूर्णिमा से सगाई हो चुकी है और रानी के लिए उसका प्यार उसे ठीक नहीं लगता। फिल्म इस मुश्किल लव ट्रायंगल में पैदा होने वाले झगड़ों के हल के साथ आगे बढ़ती है।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं और इस गीत के बीच ही हम आपको आपके सामने कुछ संदेश पढ़ना चाहते हैं। जो हमारे पास संदेश आया है वो आया सुदर्शन शाह का और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पद्मा टॉकीज नीपा नगर सिंह के साथ है। प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बीन शाह, राजेंद्र जी शाह। अगला संदेश है नीतीश देवांगन का और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूर्णाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन। यह हमें लिखकर भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश है यशमीत यशु का और इनके साथ है निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। यह हमें लिखकर भेज रहे हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। और अगला संदेश है स्वर्ण सिंह का, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। कमलकांत गुप्ता जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, पिपरिया से। अगला संदेश है गुरमीत सिंह का, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल लिख रहे हैं हमें। सोमदत्त जी का अगला संदेश आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब, इनके साथ है कैरव ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। अगला संदेश है आर कुमार से, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगला संदेश जो है वो है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गजनेजा और पूनम गजनेजा जी का। अगला संदेश है भवरपुर से राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन का। ये हमें लेकर भेज रहे हैं कि इनको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो संदेश है वो है राजकुमार डूडी का और जिला हिसार से और इनके साथ है प्रमोद कुमार डूडी। अगला जो संदेश है वो है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से और ये लिखकर हमें भेज रहे हैं, वो हमें नमस्कार करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, जो आपने लिखा है आज की जो फिल्म है पतंगा वो एक बेहद कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म है और इसका जो ये गीत है मेरे पिया गए रंगून ये सभी को बेहद पसंद है। अगला जो संदेश है वो है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहानी। और अगला संदेश जो है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं डबवाली से, मंडी डबवाली से। और अगला जो संदेश है भागवत वर्मा का है, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा इनके साथ है। अगला जो संदेश है मोहम्मद फरहान का है और इनके साथ है मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून।

श्रोताओं, हमारे पास जो अगला संदेश है वो है अजीत भापसर का, और साथ ही जो अगला संदेश आया है संजय ढींगिया जी का, इनके साथ है नमन ढींगिया पार ढींगिया। अगला संदेश है शक मोहम्मद का, और इनके साथ है खतीजा बेगम, साथ ही मोहम्मद अशफाक का, और आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। अगला जो संदेश है वो है धर्मेंद्र छीपा का, और इनके साथ है कपिल छीपा, पूजा परिहार। अगला संदेश है बसंत कुमार सिन्हा का, और इनके साथ ये भी हमें लिखकर भेजा है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। अगला जो संदेश है सुदर्शन मुखी का आया है, इनके साथ है इनका अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर से। प्रकाश वर्मा हमें लिखकर भेजे, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। अगला संदेश जो है वो है, श्रोताओं हमें बस बहुत सारे भर भर के संदेश आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी समय की कमी की वजह से हम इस कार्यक्रम का यहीं पे, जो ही हमारा एक ही फिल्म से कार्यक्रम चल रहा है, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। फिर हाजिर होंगी ये कार्यक्रम लेके ठीक कल, यानी दिन के 1:10 पर। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: 25 की खिलाफ वर्जी की है जो मजहब की आजादी की गारंटी देता है।
1: भारत का संविधान जो 25 के तहत हर धर्म के सम्मान को ही आजादी देता है, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया। लोकसभा का ये जो पूरा प्रेमिसेज है, इसके कस्टोडियन माननीय स्पीकर महोदय हैं, और मकर द्वार के सामने भी जो कुछ हुआ है उस पर हर हालत में स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर 28,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मंजलपुर असेंबली हलके में बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल को 46,000 से ज्यादा वोटों की सबकत हासिल है। मध्य प्रदेश के दातिया असेंबली हलके में कांग्रेस के घनश्याम सिंह 31,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। इन तीनों असेंबली हलकों में जुमनी चुनाव पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने कुश्ती की खातून खिलाड़ियों की जानिब से दाखिल करदा जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबराह ब्रजभूषण शरण सिंह और साथी मुलजिम विनोद तोमर को इल्जाम से बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने बीजेपी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट ब्रजभूषण और भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इससे कबल मई 2024 में एक अदालत ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ डराने धमकाने का इल्जाम तय करने का हुक्म दिया था। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जब किस्मत साथ न दे तो उस वक्त भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत का एक श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक हुनरमंद मल्लाह जिसकी कश्ती बीच समंदर में फंस जाती है वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता बल्कि तैर कर कोशिश जारी रखता है और यही मुसलसल कोशिश और सब्र किसी शख्स को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में सदर जमहूरिया गंजुम जिले में मुख्तलिफ तालीमी, सकाफती और सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। भारत में 2023 में डिजिटल प्लेज पोर्टल के आगाज के बाद से 3 साल के अरसे में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से ज्यादा वादे किए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलुकत अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आजा के अतिया के 16वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए इस बात को उजागर किया कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत में आजा बदलने के मामलात बढ़कर 20,000 सालाना हो गए हैं।
2: हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है।
0: मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि आजा बदलने की तादाद के एतबार से अमरीका और चीन के बाद आलमी सतह पर भारत तीसरा मुल्क है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसों के तवस्सुत से ईरान के साथ बातचीत आज होने वाली है। एयरफोर्स वन में सवार नामनिगार से बात करते हुए सदर ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की कि मुजाकरात के वसीले सरगर्म हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती राबतों के तनाजुर में उन्होंने इस कार्रवाई को रोक दिया जिसके तहत एक बड़ा हमला करने का मंसूबा बनाया गया था। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जीली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। उधर ओडिशा में सभी बड़े दरियाओं और उनकी 52 नदियों में पानी की सतह कम होने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल में रफ्तार बेहतरी आ रही है। ये खबर भी सुन लीजिए। बिहार के बांकीपुर असेंबली के जिमनी चुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के तनाजुर में पार्लियामेंट की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने जिंसी एतबार से हिरासा किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबराह ब्रजभूषण चरण सिंह को इल्जाम से बरी कर दिया है। भारत में आधार के जरिए तस्दीक शुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
3: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
4: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
5: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तीन दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक

0: भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे संगीतकार हुए जिन्होंने सुपरहिट गानों की झड़ी लगा दी, लेकिन कुछ ऐसे भी फनकार थे जिन्होंने गानों को सिर्फ हिट नहीं बनाया बल्कि अमर बना दिया। ऐसे ही एक खामोश, संजीदा और बेहद प्रतिभावान संगीतकार थे जयदेव जी। जयदेव जी का पूरा नाम जयदेव वर्मा था। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1918 को अफ्रीका के नैरोबी में हुआ था। जयदेव जी एक ऐसे संगीतकार थे जिसने कभी लोकप्रियता की दौड़ नहीं लगाई है, लेकिन अपनी सादगी और सुरों की गहराई से संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लिया। अफ्रीका में जन्मे जयदेव जी कैसे हिंदी सिनेमा के मशहूर म्यूजिक कंपोजर बने और कैसे रहा इनका ये सफर, इसी पर हमारा आज का ये प्रोग्राम है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले उन्हीं की फिल्म हम दोनों से ये बेहतरीन सा गीत जिसका संगीत दिया था खुद जयदेव जी ने।

जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना जिसका संगीत दिया था जयदेव जी ने। श्रोताओं, अफ्रीका में कुछ समय

बताने के बाद जयदीप जी की फैमिली पंजाब के लुधियाना शिफ्ट हो गई। पिता रेलवे में जॉब करते थे। जयदेव जी को बचपन से ही दो चीज़ों का जुनून था, एक संगीत और दूसरा फिल्में। महज 15 साल की उम्र में वे हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई भाग आए। कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, लेकिन किस्मत का को तो उनसे कुछ और ही करवाना था। पिता के निधन और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते इन्हें वापस घर लौटना पड़ा, पर संगीत का जो जुनून उनके अंदर आ चुका था उसने इन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। अपनी लगन से क्लासिकल म्यूजिक की बारीकियों को सीखना शुरू किया। फिर लुधियाना से लखनऊ का सफर तय किया और मशहूर सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान साहब से संगीत की तालीम ली। और जब उस्ताद अली अकबर खान नवकेतन फिल्म्स की फिल्मों के लिए मुंबई आए तो ये जयदेव जी को भी अपने साथ असिस्टेंट के रूप में ले आए। इसके बाद जयदेव जी को साथ मिला हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार सचिन देव बर्मन जी का और एसडी बर्मन दादा का। यहाँ से इनके लाइफ ने यू टर्न लिया और इसके बाद ये संगीत के सफ़र में आगे बढ़ते चले गए। इनके संगीत में सफ़र की बातें आगे और भी करेंगे, पर अभी वक्त हो गया है इनकी फिल्म प्रेम पर्वत फिल्म से ये बेहतरीन गीत सुनने का।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं जयदेव जी, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं, और बात कर रहे थे हम संगीतकार जयदेव जी की। मुंबई पहुंचकर जयदेव जी सालों तक SD बर्मन के असिस्टेंट रहे, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट और गाइड जैसी फिल्मों के संगीत में जयदेव जी के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बतौर इंडिपेंडेंट संगीतकार इन्हें पहली बार मौका मिला फिल्म जोरू का भाई और अंजलि में। इनके गाने पसंद तो किए गए, लेकिन जिस एक मोड़ का हर कलाकार को इंतज़ार होता है वो बड़ा ब्रेक अभी बाकी था। जयदेव जी बिना किसी हड़बड़ी के शांत भाव से अपनी धुनें बनाते रहे और सही मौके का इंतज़ार करते रहे। फिर आया साल 1961, वो पल आया जिसने जयदेव जी को हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। फिल्म थी हम दोनों। देवानंद साहब की इस फिल्म का संगीत ऐसा बना कि आज 6 दशक बाद भी इसके गाने हर पीढ़ी की जुबान पर है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जिंदगी को इतने हल्के फुल्के और दार्शनिक अंदाज में पेश करना सिर्फ जयदेव जी के बस की ही बात थी। और इसी फिल्म का गाना अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, इसे तो आज भी दुनिया का सबसे खूबसूरत रोमांटिक नगमा माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया भजन अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम आज भी देश के कोने कोने में शांति और भक्ति का प्रतीक है। सिर्फ एक फिल्म के संगीत ने साबित कर दिया कि जयदेव जी सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि भावनाओं के बहुत गहरे पारखी थे। इनके पास हर तरह के गानों को संगीत देने की अद्भुत कला थी। तो चलिए सुनते हैं इसी दौर की एक फिल्म मान जाइए का ये शानदार सा गीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं जयदेव जी। दोस्तों, फिल्म हम दोनों की भारी सफलता के बाद भी जयदेव जी ने कभी कमर्शियल रेस में भाग नहीं लिया। इन्होंने बड़े बजट की फिल्मों के बजाय उन फिल्मों को चुना जहाँ इन्हें संगीत के साथ प्रयोग करने की पूरी आज़ादी मिले। इनकी इसी आर्टिस्टिक सोच का नतीजा था कि ये हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे संगीतकार बने जिन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड मिला। पहला नेशनल अवार्ड सुनील दत्त साहब की फिल्म रेशमा और शेरा के लिए मिला। इसमें राजस्थान की फोक म्यूजिक और शास्त्रीय रागों का जो तालमेल इन्होंने पेश किया था वो शानदार था। दूसरा नेशनल अवार्ड मिला फिल्म गमन के लिए। इस फिल्म में शहर की तन्हाई को बयां करता गाना सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है हर ट्रैवलर के दर्द की आवाज़ बन गया। और तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला फिल्म अनकही के लिए। जयदेव जी ने कभी लीक पर चलना स्वीकार नहीं किया, ये हमेशा प्योरिटी ऑफ म्यूज़िक के पीछे ही भागते रहे। तो चलिए इनके म्यूज़िक को याद करते हुए सुनते हैं फिल्म घरौंदा का ये दिल को छू लेने वाला गीत।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।

जी हाँ दोस्तों, जयदेव जी की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी थी कि वे नए हुनर को पहचानने में देर नहीं लगाते थे। आज हम जिन दिग्गज सिंगर्स के फैन हैं, उनमें से कई नामी कलाकारों को पहला बड़ा ब्रेक जयदेव जी ने ही दिया था। सुरेश वाडकर, हरिहरन और छाया गांगुली जैसे फेमस सिंगर्स को इन्होंने ही फिल्म गमन के जरिए पहली बार मौका दिया। छाया गांगुली ने तो प्लेबैक सिंगिंग का नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इतना ही नहीं, कवि हरिवंश राय बच्चन जी की फेमस मधुशाला को जब मन्ना डे साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया तो उनका जो संगीत था वो भी जयदेव जी ने ही तैयार किया था। साहित्य और कविता की इन्हें काफ़ी गहरी समझ थी, जिस वजह से ये इनको सहज और सुरीले धुनों में पिरो देते थे। तो चलिए इसी मिठास को महसूस करते हैं और सुनते हैं फिल्म गमन का ये गीत।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का। 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले इतने बड़े संगीतकार जयदेव साहब की निजी जिंदगी कैसी थी, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जयदेव जी का जीवन भर बेहद जीवन बेहद सादा था। इन्होंने कभी शादी नहीं की और मुंबई के एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी गुजार दी। 6 जनवरी 1987 को इस महान संगीतकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनका संगीत आज भी फैंस के दिलों में धड़कता रहता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस वक्त चल रहा है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। और इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत जीने की राह फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हमें संदेश भेज रही है और इन्होंने भेजा है कि हमारा संदेश हमारा कार्यक्रम भी सुन रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, और इनको पसंद आ रहा है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, जो अगला संदेश है वो है मास्टर अशोक कुमार वर्मा का, और इनके साथ हैं अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित रितुआ, मुकेश जगताप।

दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत के गीतकार थे शैलेंद्र और शुरू से सजाया था शंकर जयकिशन ने। तो श्रोताओं चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत जो कि है मेरा साया फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, हमारे पास संदेश आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और उन्होंने लिखा है, दीक्षा जी सादर प्रणाम। प्रणाम आपको भी, कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मन भावन की और मोहक प्रस्तुति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगला संदेश है वो है असलम खान का, और इनके साथ हैं रेशमा खान, और उन्हें भी हमारे गीत पसंद आ रहे हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त अपराह्न के 3:30 हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

0: कि शायरी जो है उसका पहला दौर अगर हम मान लें तो उसमें तो आप अच्छे खासे तरक्की पसंद और बेबाक किस्म के एक शायर के तौर पे उभरते हुए नज़र आते हैं।
1: मैंने कबल ही अर्ज़ किया कि उसलूब और ज़बान की सतह पे जदीदियत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहे हम,
0: जी
1: लेकिन ख्यालात की सतह पर, मजामीन की सतह पर हमारे जो मसाइल थे, जाहिर
0: जी
1: है कि जो शायर होता है या राइटर होता है उसका समाज से कहीं ना कहीं से सरोकार है,
0: जी
1: उनके मसाइल से उसके सरोकार हैं, उनके जो जो उस ज़माने में जो मसाइल होते हैं उन मसाइल से उनको बराह रास्त वास्ता पड़ता है। तो और क्या इजहार करेगा वो इन्हीं बातों का इजहार करेगा, और इजहार अगर नहीं करेगा, शायरी को आप समाज से काट देंगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो है दाखिली नौईयत की शायरी करें तो उसका दायरा बहुत महदूद हो जाता है। तो जाहिर है मेरे सामने उस ज़माने में जब मैंने शायरी शुरू की थी बहुत सारे मसाइल थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिकल थे, तो उन सबों को मैं झेल रहा था, उन सबों को महसूस कर रहा था, उन सबों का कर्ब, उन सबों का दर्द मेरे अंदर मौजूद था,
0: जी
1: उसका इजहार मेरी शायरी में हो रहा था, जिसे आप तरक्की पसंदी से मंसूब कर रहे हैं।
0: जी अच्छा, उसके बाद ये एक तब्दीली देखने को मिलती है, एक आम कारी की हैसियत से जो मैंने महसूस किया कि आपकी आवाज़ में भी इत्तेदाल पैदा हो गई है, और उस इत्तेदाल का नतीजा ये हुआ कि आपने माशरे की बात को भी अपने ज़ाती मसाइल के लिए जो उसलूब इस्तेमाल करते हैं उसी में इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जदीदियत के जो शुरा थे उनका भी मामला तकरीबन यही था। तो कौन कौन से शुरा थे जो आपको मुतासिर करते थे या अच्छे लगते थे और क्यों?
1: मुझे अच्छे लगते थे उस ज़माने में जब मैंने शुरू किया था, तो उनमें शकीर जलाली, इफ्तिखार आरिफ,
0: जी
1: शहरयार साहब,
0: जी
1: निदा फाजली
0: जी
1: और कई नाम हैं
0: जी जी जी
1: जो जो
0: सर
1: मुझे
0: दस्त
1: बहुत
0: नहीं याद आ रहे होंगे
1: हाँ
0: लेकिन
1: याद
0: आएंगे।
1: नहीं
0: जी
1: आ रहे
0: जी
1: हैं, लेकिन उनसे उनकी शायरी बहुत अच्छी लगती
0: जी
1: थी और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने उनकी शायरी से, और उस तरह की शायरी करता रहा।
0: जी एक मौके पे आपका एक इंटरव्यू मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो आपने किसी तहरीक से या तहरीकात से और रुझानात से वाबस्तगी को बहुत मुस्तहसन नहीं माना था, बल्कि एक आज़ाद फ़ज़ा में आप तख्लीक करने के कायल नज़र आए। तो मुतासिर होना एक चीज़ है, लेकिन यह कि तख्लीकी सरोकार जो है, तो इसमें कहाँ आप अपने आप को डेविएट करते हैं या औरों से मुख्तलिफ रवैया अपनाते हुए नज़र आते हैं कि ठीक है तरक्की पसंदी है या जदीदियत है या माबाद जदीदियत है या तीसरी आवाज़ या आज़ादाना आवाज़ इस तरह की शायरी जो हुई, या हल्का अरबाब ज़ौक़ को हम लोग भूल जाते हैं तो उन्होंने जिस तरह से दाखिल को फ़ौकियत दी, तो इन तमाम चीज़ों के अलावा किन मामलात में आप अपने आप को आज़ाद पाते हैं? आप तरक्की पसंदी, जदीदियत और माबाद जदीदियत इन सब के करीब नज़र आते हैं, लेकिन आज़ाद अपने आप को कहाँ पाते हैं?
1: आप किसी तहरीक के साथ जुड़ते हैं तो उस तहरीक का फ्रेम जो है वो आपका मॉडल बन जाता है। तरक्की पसंदी में गए तो यानी आपको दाखली बात कम करनी है या नहीं करनी है, खारजी बातों पर ज़्यादा जोर देना है, यानी गोया एक फ्रेम में आप बन जाते हैं।
0: जी
1: उसी तरह आप जदीदियत के फ्रेम में जब फिट होते हैं तो वहाँ आप जो है सिर्फ दाखली बात करते हैं या सिर्फ ज़ात से मंसूब बातें करते
0: जी
1: हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर इस तरह से मैंने महसूस किया कि अगर इन किसी फ्रेम में अगर जाके आप शायरी करते हैं तो शायरी का दायरा बहुत महदूद हो जाता है।
0: जी
1: या तो आप दाखिली बात करें या ज़ात की बात करें, और या आप तरक्की पसंदी की तरफ जाएं तो समाज की बात करें।
0: जी
1: तो क्या इंसान की जो सरोकार हैं वो न सिर्फ दाखिल से हैं, न सिर्फ ज़ात से हैं, बल्कि कहीं ना कहीं तो ज़ात भी जो है समाज से
0: जी जी
1: मिल ही
0: वो
1: जाती
0: जाहिर है माशरे का
1: जाहिर
0: हिस्सा
1: है।
0: होता है। तो
1: तो हम माशरे से क्यों परहेज़ करें, और शायरी का कुछ ना कुछ तो मकसद तो ज़रूर होता होगा।
0: जी
1: तो अगर हम कोई नाहमवारी पा रहे हैं, हम कोई जो है जुल्म बर्बरियत पा रहे हैं, या किसी तरह की नामसायद हालात पा रहे हैं, तो ये भी तो फ़नकार का फ़र्ज़ है कि वो अपने शायरी में, अपने अफसानों में उनका इजहार करे, उन पर एहतजाज करे,
0: बिल्कुल
1: या उसे लगता है कि आदमी जो है आदमी की सतह से नीचे गिरता जा रहा है, इंसान बनने के बजाय हैवान बनता जा रहा है, तो इंसानियत की तरफ उसको रागिब किया जाए, उसको पॉजिटिविटी उसके अंदर लाई जाए, ये भी फ़नकार का काम है।
0: जी जी बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसीलिए मैंने सोचा कि अपने आप को किसी फ्रेम में कैद नहीं किया जाए, अपने आप को आज़ाद रखा जाए, और जो दिल पे गुजरती है उसको रकम किया जाए।
0: रकम किया जाए। बिल्कुल आलम खुर्शीद साहब, आप

0: अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बिहार और उसके इर्द गिर्द यानी मशरक़ी यूपी, यहाँ से आपका ज़्यादा ताल्लुक़ रहा। तो जब आपने शायरी शुरू की, आप मकबूल हुए और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मकबूल हुए, आपको अलग अलग तहरीकात के रसायल ने फौकियत के साथ शाया करना शुरू किया। आप शबख़ून में भी छपते थे और तरक्की पसंद रसायल में भी, यानी आपको एक तरफ तो कमर रईस हाथों हाथ लेते थे और अपने रसाले में, दूसरी तरफ फारूकी वो अपने रसाले में। तो शायरी जो है बुनियादी तौर पे बहुत मैच्योर आपकी थी, लेकिन मुताले के ज़रिए मुतासिर होना एक बात हुई, और जो आपके सराउंडिंग्स में, आपके हलक़े अहबाब में, ख़्वाह वो उम्र में कुछ बड़े रहे हों, छोटे रहे हों, मासिर रहे हों, तो उनमें से किन लोगों के साथ उठना बैठना होता था, और उस वक्त बिहार की उर्दू शायरी के जो नुमाइंदा लोग थे, उनके कौन से ऐसे औसाफ़ थे जिनसे आप मुतासिर होते थे?
1: मेरे हमअसरों में बिहार में तो उस वक्त खुर्शीद अकबर, जमाल ओवैसी नुमाया तौर पर सामने थे।
0: जी, सीनियर्स में?
1: सीनियर्स में सुल्तान अख्तर, सिद्दीक मुजीबी,
0: जी
1: प्रकाश फिक्री,
0: जी जी जी
1: शाहिद
0: बिल्कुल
1: करीम, तो
0: जी
1: ये लोग थे। तमाम लोगों के उसलूब अलग अलग थे। कोई जदीदियत के फ्रेम में बिल्कुल कैद था, कोई थोड़ा फ्रेम से बाहर निकला। किसी का लहजा बहुत बुलंद था, किसी का लहजा बहुत धीमा था,
0: जी किसी का तेवर बागियाना था।
1: किसी का
0: जी
1: तेवर बागियाना
0: जी
1: था। हाँ,
0: हाँ,
1: मसलन सिद्दीक मुजीबी साहब
0: सिद्दीक
1: का,
0: मुजीबी जी जी जी
1: प्रकाश फिक्री साहब बहुत नरमी
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: मुलायमियत से
0: नरमी
1: जो है
0: मलाहत के
1: बात,
0: साथ जबान
1: हाँ
0: का
1: बात
0: इस्तेमाल
1: करते थे।
0: करते थे। जी
1: सुल्तान अख्तर साहब की आहंग से बहुत ज़्यादा
0: जी
1: कुर्बत थी।
0: जी
1: तो इन तमाम लोगों से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहता था,
0: जी
1: और मेरा बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ उठना बैठना तो नहीं रहा है।
0: जी
1: और मैं थोड़ा अलग थलग भी अपने मिजाज से रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या
1: मैं
0: ये सही बात है कि आप गोशा नशीन या ये कि अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद करते थे, कि अपने सेल्फ के साथ, अपनी ज़ात के साथ रहना, माशरे से बहुत घुल मिल करके रहना आप पसंद नहीं करते थे, ये सही बात है?
1: नहीं, ये मैं शुरू से बहुत यारवाश आदमी रहा
0: जी
1: हूँ, और मेरा सर्किल बहुत लंबा चौड़ा था।
0: जी
1: शायरी की दुनिया में आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ कई खाने हैं, कई तरह के लोग हैं, या जो इनकी आदतें हैं या जो इनके हालात हैं वो मुझे बहुत सूटेबल नहीं रखते थे। मसलन जो है कहीं पर बैठ के अड्डेबाजी करना,
0: जी
1: इसकी बनस्बत मैं प्रेफर करता था कि मैं अकेले अपने साथ रहूं,
0: जी
1: अपने और मुताला करूं, यह ज़्यादा मुझे रास आता था।
0: तो इसको नरगिसियत से मंसूब किया जाए, खुद पसंदी से मंसूब किया जाए, या ये कि जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उस माकूलियत के पैमाने पे खरे नहीं उतरते थे कि जिसका तकाजा एक सच्चा अदीब करता है, एक सच्चा शायर करता है?
1: नरगिसियत और खुद पसंदी का मामला नहीं था। मामला यही था कि शायद मैं जो चाहता था, जिस तरह का माहौल चाहता था, या जिस तरह की संजीदगी चाहता था शायरी में, चाहे गुफ्तगू में हो, या जैसे मुझे किसी होटल में बैठ के शेर सुना का आप कहें तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं वैसी बातें नहीं पसंद करता। या फिर कहीं बैठे और फालतू के किसी होटल में बैठे हुए हैं, 10 शोरा और इनकी शिकायत, उनकी शिकायत, इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहा। और यही वजह है कि वहाँ बैठने की जगह मैं प्रिफर करता था कि मैं अपना वक्त जो है मुताले में सर्व करूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
0: जी, आलम खुर्शीद साहब, आपकी शायरी का अगर महात्मा किया जाए मुताले के बाद, तो ये महसूस होता है कि ज़ात और माशरत ये दो तो मौजूआत हैं ही, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो क्लासिक से आप मदद लेते हैं और ऐसे इस्तियारे वज़ा करते हैं कि हमारा जहन जो है वो दास्तानों की तरफ या ये कि कर्बला के हादसे की तरफ भी जाता है। तो इस सिलसिले में जो आपके माशरीन या कदरे कुछ सीनियर जो दो नुमाइंदा शायर हमारे सामने आते हैं, शुजा खावर और असद बदायूनी, इनके अलावा आपने गुफ्तगू की और उसमें जाहिर सी बात है सभी नाम नहीं याद रहते, मसलन साकी फारूकी हैं, मुनीर नियाज़ी हैं, ज़फ़र इकबाल हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, तो इनकी जो शायरी है इनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे औसाफ़ होते हैं जो उनको मुमताज़ करते हैं एक दूसरे से। आप क्या समझते हैं कि आपके यहाँ कौन सा ऐसा वस्फ है जिस पे आप ख़ुद मुतमईन होते हैं कि नहीं, ये मेरा वस्फ जो है ये माशरीन में नहीं है, मिसाल के तौर पे शुजा खावर के यहाँ नहीं है, बुलंद आहंगी का जहाँ तक मामला आया, या استعاروں کو ڈھالنے کا جہاں تک معاملہ ہے. یا اسد بدایونی.

0: नीचे जो है एक रवानी है। साकी के यहाँ जो नफ्सियात का मामला आता है या डिज़ायर्स का मामला आता है, ख्वाहिशात का मामला आता है। इरफान सिद्दीकी के यहाँ जो कल्चरल डिस्कोर्स का रिट्राइवल हुआ, या शुजा खावर और असद बदायूनी के यहाँ जो अनानियत का मामला दरपेश आया, इस लिहाज से अगर महाकमा किया जाए तो जाहिर सी बात है आपका मुताला बहुत वसी है, ये मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, आपने शायरों को पढ़ा हुआ है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो मुस्तहसन नहीं तस्लीम की जा सकती, किसी भी लिहाज से नहीं की जा सकती। माशरे में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं गुज़श्ता 15-20 साल से, ये जो इसमें सेलिब्रेशन का जो रवैया है, ख़ासतौर से अवाम जिस तरह से चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे निदामत का इजहार करना चाहिए, जहाँ पे रंज और गुस्से का इजहार करना चाहिए, वहाँ पे हम फरहत का इजहार कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, इसको बरतते हैं आप नज़मों में, गज़लों में, शायरी में?
1: बिल्कुल, यही मेरे शायरी के मेन मौजूआत यही हैं।
0: चंद एक शेर अनाथ फरमाएं।
1: लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी,
0: लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी,
1: लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी, बस एक जिद है कि दरिया
0: यहीं पे आएगा। वाह, बहुत उम्दा।
1: और कमाने वक्त ने हमको हदफ बनाया है,
0: कमाने वक्त ने हमको हदफ बनाया है,
1: कमाने वक्त ने हमको हदफ बनाया है, कहीं से तीर चलेगा
0: यहीं पे आएगा। जी,
1: और मैं शबनम का किस्सा लिखता रहता हूँ,
0: मैं शबनम का किस्सा लिखता रहता हूँ
1: और कागज़ पे धूप रकम हो जाती है।
0: क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।
1: मैं शबनम का किस्सा लिखता रहता हूँ और कागज़ पर धूप रकम हो जाती है।
0: ये आमाल और नतीजे में जो तजाद की कैफियत है, या जो नतीजा हमको बरामद होता है बिल्कुल बरक्स के, हम सोच के कुछ और काम करते हैं और नतीजा जो है उसके बरक्स अच्छा ही करते हैं, उसका सिला जो है उसके बरक्स मिलता है, या तवक्को रखते हैं कि हम उनके मोहसिन हैं तो वो भी हमारे मोहसिन होंगे, तो इसके बरक्स जो नतीजा बरामद होता है ये भी तो बहुत अपीलिंग होता है। इस पर आप कैसे अपने आप को जाहिर करते हैं?
1: ये जो अपीलिंग नतीजा बरामद होता है उस पर दो तरह के रद्दअमल होते हैं, एक तो जिसको कहेंगे कि आप उसकी मुखालफत करते हैं और उसके जवाब में बहुत शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हैं
0: जी,
1: और दूसरा होता है कि बहुत मुलायमियत, बहुत नरमी के साथ आप उस बात को कोई दूसरा टर्न देने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
0: जी, आलम खुर्शीद साहब, बहुत उम्दा गुफ्तगु रही, बहुत सारी बातें। अभी तशनगी बरकरार है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आलम खुर्शीद साहब के उर्दू मजलिस के रूबरू प्रोग्राम में अपना, ना ये कि सिर्फ कीमती वक्त आपने दिया बल्कि हमें अपने तजर्बात से महसूस कराया, बेहद शुक्रिया।
1: आपका भी बेहद बहुत शुक्रिया, उर्दू मजलिस का बहुत शुक्रिया।
2: सामईन, अभी आप मारूफ शायर जनाब आलम खुर्शीद की बातचीत सुन रहे थे। आपसे महव गुफ्तगू थे जनाब ज़ुबैर शादाब। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम रूबरू। अब आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने मेज़बान मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: कार्यक्रम खेल खिलाड़ी,
1: खेलों का आईना।
2: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और हाजिर हूं लेकर एक बार फिर से खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल गतिविधियां, जिनको लेकर आते हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम में हम। और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे मेरे साथी
3: अर्शद।
2: अर्शद और मैं आपको लेकर चलेंगे खेलों के सफर पर, जहां आपको सुनने को मिलेंगे खेलों से जुड़ी नई नई जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में संपन्न हो चुके हैं और वहां पर भारतीय जो दल है उसने किस तरह का प्रदर्शन किया है, इस पर प्रस्तुत है हमारी विशेष रिपोर्ट।
4: जब जज्बा बड़ा हो तो चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं। जब तिरंगा सीने पर हो तो हर मुकाबला इतिहास बन जाता है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। इस बार कई ऐसे खेल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे जिनमें भारत पारंपरिक रूप से सबसे ज्यादा पदक जीतता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया को बता दिया कि भारत की खेल शक्ति अब किसी एक खेल तक सीमित नहीं है। आइए जानते हैं कैसा रहा भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा अभियान। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे पायदान पर रहा। इस बार भारत की

0: ओर से 122 खिलाड़ियों ने 8 खेलों और 5 पैरा स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि प्रतियोगिता में कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और निशानेबाजी जैसे भारत के सबसे सफल खेलों को बाहर रखा गया था। इन्हीं खेलों से भारत ने बर्मिंघम 2022 में 61 में से 25 पदक जीते थे। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं इन खेलों के शुरुआती दिनों में, जहां भारत के अभियान का पहला पदक झंडू कुमार ने दिलवाया। उन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर ग्लासगो 2026 में भारत का खाता खोला। झंडू कुमार की कहानी खेलों में आसान नहीं रही। जीत के बाद सुनिए क्या कहा था उन्होंने।
1: हमने तो यहाँ तक पहुँचने में तो क्या क्या नहीं किए, बहुत मेहनत। हमने सब्जी बेचे, यहाँ तक टोटो भी चलाए, सवारी भी, पैसेंजर भी धोए, तब जाके यहाँ तक हमें।
0: इसके बाद श्रीकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग वर्ग में रजत पदक जीतकर एबल बॉडी प्रतियोगिताओं में भारत का पहला पदक हासिल किया। भारत का पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग में जीतकर देश की झोली में डाला। इसके साथ ही उन्होंने लगातार 30वें कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने का एक इतिहास भी रचा। वेट लिफ्टिंग में भारत ने कुल 8 पदक जीते। मुथु पांडी राजा, ज्ञानेश्वरी यादव, वल्लूरी अजय बाबू, हरजिंदर कौर और लवप्रीत सिंह ने रजत पदक जीते, जबकि बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक जीतने के बाद खिलाड़ियों के इमोशन कुछ इस तरह निकले। आइए सुनते हैं मीराबाई चानू और ज्ञानेश्वरी यादव को।
2: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि इस बार में मैं मेडल दे तो पाऊंगी, पर मैं रिकॉर्ड भी कर पाएगी कि नहीं। बहुत सारी मेरे ऊपर प्रेशर भी थे इंडिया के पूरा फ्रेंड्स की वजह से, और मेरा पूरा इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का।
3: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं, और मैंने वही किया, अपना पर्सनल बेस्ट यहाँ पे किया। और मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ।
0: ग्लासगो से आई इस बार की सबसे बड़ी खबर सिर्फ पदकों की नहीं रही, बल्कि भारतीय महिला खिलाड़ियों के शानदार दबदबे की है। मुक्केबाजी से लेकर वेटलिफ्टिंग, जूडो और पैरा एथलेटिक्स तक हर मंच पर भारतीय बेटियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया। मुक्केबाजी इस बार भारत का सबसे सफल खेल साबित हुआ। भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल थे। ये किसी भी देश के द्वारा एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी में जीते गए सबसे ज्यादा स्वर्ण पदकों का नया रिकॉर्ड था। प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया गंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पंगाल ने स्वर्ण जीते, जबकि जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाया। खास तौर पर ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने महिला 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक और महत्वपूर्ण पदक जोड़ दिया। आइए सुनते हैं उस लम्हे को जब भारतीय बॉक्सर भारत देश का नाम रोशन कर रहे थे।
4: The winner and Commonwealth Games champion in the blue corner from India, Yasmin.
5: काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे हम आए थे कि हम इंडिया को जितना अपनी परफॉर्मेंस से प्राउड फील करवा सके उतना करवाए, तो मेंटल क्रिएट हुआ है। जैसे हम वार्म अप कर रहे थे तो तभी कोचेस ने बोला था कि बस अपना गेम खेलना है और हम फाइनल्स में हैं, और इंडिया के लिए वो जो राष्ट्रगान जो सुनना होता है, पोलिंग पे खड़े होना होता है, लाइफ में बहुत अहम होता है, तो बस उनका यही था कि हम वो पूरा कर पाए, इंडिया को गोल्ड दिला पाए, तो उसी के लिए बस जाना है।
0: जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। अस्मिता डे कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की सफलता को और आगे बढ़ाया। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक जीते। चलिए सुनते हैं अस्मिता को।
6: ये गोल्ड मेडल मेरे लिए बहुत ही मतलब सब कुछ ही है, क्योंकि ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स और इसमें मैंने गोल्ड मेडल जीती हूँ मैं, और इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया और माइंडसेट के साथ सब कुछ मतलब मेरे डाइट, माइंडसेट, ट्रेनिंग सब कुछ मैंने मेंटेन रख के फिर इसके लिए मैंने लड़ाई की और गोल्ड मेडल जीता।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स हमेशा

0: सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित स्पर्धाओं में गिना जाता है। लेकिन ग्लासगो 2026 में भारतीय एथलीटों ने ये साबित कर दिया कि अब वो सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरते हैं। कई नए कीर्तिमान, यादगार प्रदर्शन और अहम पदकों के साथ भारतीय एथलेटिक्स ने इस बार अपनी अलग पहचान छोड़ी। एथलेटिक्स में भी भारत के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज हुई। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बने। उन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। आइए सुनते हैं क्या कहा गुलवीर ने।
1: फीलिंग अच्छी है, मेडल आने के बाद फीलिंग अच्छी हो जाती है, तो दोनों की चलती है, एक ही में दोनों की हो जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेनिंग चलती है उस हिसाब से हो जाता है, क्योंकि स्पीड भी होता है, एंड्योरेंस का भी काम होता है उसमें, ट्रेनिंग कराता कोच।
0: तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य जीतकर इस स्पर्धा में भारत का पहला कॉमनवेल्थ पदक दिलाया। वहीं नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर शानदार वापसी की। इसी स्पर्धा में यशवीर सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि मैंने जीता था, आज काफी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है, मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है, अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी हैं।
0: सर्वेश कुशारे ने हाई जंप, मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप और प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में रजत पदक जीते, जबकि सीमा काली रामना और सेल्वा प्रभु ने कांस्य पदक हासिल किए। वही बात करें यदि पैरा एथलेटिक्स की तो भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। शर्मिला, दिलीप गावित और सोनम राणा ने स्वर्ण पदक जीते। मोहम्मद बासिल और शुभम जुयाल ने रजत, जबकि शिल्पा के शायला ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने पैरा स्पोर्ट्स में कुल 7 पदक जीते, इनमें 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य शामिल रहे। खास बात ये रही कि पैरा एथलेटिक्स में भारत ने 3 स्पर्धाओं में डबल पोडियम फिनिश किया। अगर खेलवार प्रदर्शन पर नजर डालें तो बॉक्सिंग और एथलेटिक्स से भारत को 10-10 पदक, वेट लिफ्टिंग से 8, पैरा एथलेटिक्स से 6, जूडो से 4 और पैरा पावर लिफ्टिंग से 1 पदक मिला। भारत के इस प्रदर्शन पर सीनियर खेल पत्रकार जी राजा रमन कहते हैं,
3: बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा भारत का। कई लोग सोच रहे थे कि 30 मेडल अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ना शूटिंग था इसमें, ना आर्चरी है, ना रेसलिंग था। कुछ हमारे इवेंट्स जहां पे हमको लगातार मेडल्स आते हैं कॉमनवेल्थ गेम में, वो डिसिप्लिन ड्रॉप हो गए थे। उसके बावजूद अगर 39 मेडल्स आए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अच्छा संकेत मिलता है भारत के खेल और खिलाड़ियों से।
0: यहाँ पर इस कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे जो एक इतिहास है वो रचे गए हैं। अगर अस्मिता की बात करें लास्ट डे पर, स्पेशली बॉक्सिंग में लड़कियों की बात करें और ओवरऑल भी लड़कियों की बात करें, तो उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा रही है, इस पर क्या कहना है?
3: बहुत अच्छी बात है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लड़कियों ने लाए हैं, हमारे महिलाओं ने लाए हैं, तो ये अच्छी बात है और ये प्रोत्साहित करेगा बाकी जो युवा लड़कियां हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको एक एंकरेजमेंट मिलेगा आगे चल के अपने बच्चों को खिलाने का। भारत का खेल का भविष्य और बेहतर हो जाएगा। बहुत सारे मेडल्स हमारे महिलाएं जीतती हैं लगातार, आज नहीं पिछले 50 सालों में हमने देखा है। पीटी उषा ने एक रेवोल्यूशन लीड किया था, लेकिन अब और ज्यादा हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यही परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में भी हो, विश्व स्तर पे भी हो। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, हमारा पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर और तेज हो जाता है तो हम विश्व स्तर पर अच्छे देश बन सकते हैं, स्पोर्टिंग नेशन।
0: सर, आप लगातार फॉलो कर रहे थे, हम लगातार बात भी कर रहे थे, अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो क्या आपको लगता है कि इंडिया ने जो जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी वो यहाँ रही है?
3: बिल्कुल रही है, उम्मीद से बेटर ही हुआ है। जैसे मैं कह रहा था, अगर हम 30 मेडल का उम्मीद लेके चले थे, अगर 39 मेडल आए हैं तो ये दिखाता है कि कुछ हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर गए उम्मीद से ज्यादा। लेकिन बहुत ज्यादा हम वी शुड ऑल्सो नॉट बी स्वेड, क्योंकि बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग दो ऐसे खेल है जहां हमको एशियन गेम्स में मेडल्स कम मिलते हैं, तो हमको वहां पे स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना होगा। एथलेटिक्स में अगर 10 मेडल आए हैं और 6 हमारे पैरा एथलीट लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस परफॉर्मेंस को सही आंकना चाहिए। वहां पे एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल शायद दिखा नहीं हमको, लेकिन जिस तरीके से दूसरे खिलाड़ी आए, हमेशा हम नीरज की ओर आकर्षित रहता है हमारा ध्यान, सर्वेश कोशारे की बात करें या तेजस्विन

0: शंकर की बात करें, मुरली श्री शंकर की बात करें, या डिस्कस थ्रो में सीमा की बात करें, ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं एथलेटिक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में। खास करके एथलेटिक का मुकाबला बहुत संघर्ष करना होता है, वहां मेडल लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है।
1: तो आपको क्या लगता है वो ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने एक्चुअली अपनी परफॉर्मेंस से खुद को भी प्रूव किया और अभी आगे आने वाला जो टाइम है उसमें वो प्लेयर जो है इंडिया को और मेडल दिलवा सकते हैं?
0: अगर आप मेरे से एक खिलाड़ी की बात करना चाहते हैं तो वो तेजस्विन शंकर है, जो डिकैथलॉन का ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। हमें लगा कि वो सिर्फ कांस्य पदक है, लेकिन जो मेहनत उन्होंने की है, 4 दिन, आपको याद होगा हाई जंप कंपटीशन से बाहर हो गए थे, उनके नी में देयर वाज अ प्रॉब्लम, और उसके बावजूद अगर वो आकर मेडल लाते हैं, ये दर्शाता है कि वो कितने भूखे थे मेडल के लिए और भारत का नाम रोशन करने के लिए। सबसे अहम मेडल मेरे लिए एथलेटिक्स में यही रहा। गुलवीर सिंह की हम बात करें तो कम ही होगी, जितनी बात करें कम होगी। कोई ऐसा एथलेटिक्स में खिलाड़ी नहीं था जिसके पास 2 मेडल एक कॉमनवेल्थ गेम में हो, और गुलवीर ने वो कमी पूरा कर दिया है। 10,000 में सिल्वर और 5,000 में ब्रॉन्ज मेडल लेकर गुलवीर ने दिखा दिया कि हमारे ट्रैक के एथलीट्स भी कम नहीं है। इट इज ट्रूली अ वंडरफुल एफर्ट।
1: तो अब सर, क्योंकि आपने जैसा कहा कि नीरज की ओर हम लोग सब देखते हैं, लेकिन कई गेम ऐसे भी रहे, चाहे पैरा स्पोर्ट्स हो चाहे फिर एथलेटिक्स हो, जिसमें हमारे भारत के दो दो खिलाड़ी जो हैं वो मेडल लेकर के आए हैं, तो भविष्य कैसा लगता है अब आपको ओवरऑल?
0: पॉजिटिव है, सरकार ने खूब पैसा लगाया है हमारे ओलंपिक खेल में, टॉप लेवल के एथलीट्स को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब समय आ गया है जब हम वो डेवलपमेंट एथलीट्स पे फोकस करें, ताकि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम जो अहमदाबाद में आयोजन होने, वहां पे और बेहतर प्रदर्शन हो भारतीय खिलाड़ियों का, और फिर 2032 वाला ओलंपिक और 2036 वाला ओलंपिक, उसमें भी अगर भारत को ज्यादा मेडल लाने हैं, अभी से मेहनत करनी होगी इन एथलीट्स पे जो डेवलपमेंट स्टेज पे होंगे या फिर ग्रास रूट स्टेज पे होंगे। और मुझे लगता है वो कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने खेलो इंडिया मिशन का एक अनाउंसमेंट किया है, बहुत पैसे लग रहे हैं भारत की भारतीय ओलंपिक स्पोर्ट में, और ये अच्छी बात है।
1: तो दोस्तों, ग्लासगो 2026 ने साफ कर दिया कि भारतीय खेल सिर्फ अब कुछ चुनिंदा खेलों तक सीमित नहीं है। जिन खेलों में कभी भारत की मौजूदगी कम मानी जाती थी, आज वही खिलाड़ी तिरंगा बुलंद कर रहे हैं। सीमित अवसरों में भी 39 पदक जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने ये संदेश दे दिया कि आने वाला समय भारत के खेल इतिहास का सबसे सुनहरा दौर हो सकता है। अब यही उम्मीद और इसी विश्वास के साथ जब भारत 2030 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा, तो वहाँ पर भी हम भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थी भारत की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में रही। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं टेबल टेनिस के कोर्ट पर, जहां दिल्ली में आयोजित हुई कॉमनवेल्थ टेबल

0: पर खेती नहीं हो रही है और हम पेड़ लगा रहे हैं और वहां पर और जानवर चराने का काम कर रहे हैं या मछली पालन का काम कर रहे हैं, वो हमारी अपनी जमीन है और उसमें यदि पेड़ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म वानिकी। वो हमारा जिसे बोलते हैं एक फार्म है हमारे पास में, फार्म हाउस है,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ जी,
0: घर तो है ही है, उसके चारों ओर यदि पेड़ लगा दिए तो फार्म हाउस हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने बताया ये तो हो गया हमारी प्राइवेट जमीन, और जो आपने बात रखी है उसको बोलते हैं हम सामाजिक वानिकी। जो सामाजिक भूमि है या वन से बाहर की भूमि है और उनमें जैसे श्यामलात आपने बोला या और कोई जमीन ऐसी जिसमें बिल्डिंग के चारों ओर है, बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चारों ओर है, तो सामाजिक वानिकी या अर्बन वानिकी उसको बोलते हैं हम लोग। यदि उसमें हम लोग पेड़ लगाते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक बिल्डिंग बनाने से वहां पर हीट आईलैंड इफेक्ट होता है, वहां पर गर्मी बहुत हो जाती है। और आजकल तो हम लोग देखते हैं कि शीशे लगा देते हैं, शीशे जो है वो सूर्य की रोशनी को अंदर ले लेते हैं और उससे और ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, या बहुत सी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो एसी लगा देते हैं और एसी जो है अंदर तो ठंडक देता है परंतु बाहर वो गर्मी देता है, तो वहां पर हीट आईलैंड इफेक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ऐसी जगह में यदि हम लोग बहुत अच्छे घने और ऐसे पेड़ लगाएं जिनमें हमेशा पत्ते जो है हमेशा रहते हैं, जिसमें पतझड़ तो होती है परंतु हमेशा पेड़ जो है वो पत्ता बहीन नहीं होता, तो इस प्रकार के यदि पेड़ हम लगाते हैं वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको सही में इसमें कुछ आप कुछ मतलब यदि उदाहरण दूं तो आजकल हम लोग बोलते हैं केसिया सियामिया, अमलताश, आप देखेंगे शहरों में अमलताश जब लगाते हैं पीला फूल उसमें आ जाता है
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: कितना बढ़िया होता है कि सर्दियों में हमेशा पत्ते रहते हैं और गर्मियों में हमेशा पीला फूल आता है, तो एक अलग शहर का माहौल हो जाता है। केसिया सियामिया है, इसी प्रकार से गुलमोर है, ये पेड़ यदि अर्बन एरिया में हम लगाएं तो बहुत अच्छा है, और समाज का सामाजिक भूमि है तो उसमें हम बहुत से ऐसे पेड़ लगा सकते हैं, जामुन लगाएं, शहतूत लगाएं, अर्जुन लगाएं, इस प्रकार के पेड़ लगाएं। और यदि बहुत ही सूखापन रहता है तो हम जंगल जलेबी लगाते हैं, हम लोग कीकर के पेड़ लगा देते हैं, और वो ऐसा नहीं है कीकर का पेड़ बुरा है, यदि कुछ और नहीं होता तो कीकर पे का पेड़ होना बहुत अच्छी बात है, और उसमें जब फूल आते हैं तो वहां पर उसमें बर्ड्स जो है पक्षी जो है वो बैठते हैं, छोटी छोटी मधुमक्खियां उसमें आकर बैठती हैं, वो अपने लिए वो नेक्टर लेती हैं, फिर हमें शहद देती हैं, तो इस प्रकार के पेड़ों का चयन करने से हमें बिल्कुल फायदा मिलेगा और सामाजिक भूमि जो है वो हमें हरा भरा दिखाई देगी। और आपको सही बताऊं हमारी 1/3 भाग जो है जमीन का वो हरा भरा होना चाहिए। और

0: हमारे पास में जमीन बची कहाँ है, लगभग 25% जमीन ऐसी है जो वनों के आच्छादित होनी चाहिए है, और उसके बाहर हमें 33% के लिए 8% और जमीन चाहिए, तो वो हमारे पास में या तो ये सामाजिक वानिकी है या फिर ये जो कृषि भूमि है उसी में है जिसमें हम पेड़ लगा के 1/3 भाग जो है जमीन का हरा भरा कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, प्रकृति का सौंदर्य बढ़े उसके लिए हम लगातार पेड़ लगाते रहें ताकि हमारे पर्यावरण की समस्या का समाधान हो और हमारी ज़रूरतें पूरी हों। काफ़ी अच्छी जानकारी दी, इस जानकारी के लिए डॉक्टर सुखदेव सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस मौसम में हम पेड़ लगाएं और जमीन को हरा भरा बनाएं।
2: बरसात के मौसम में पौधारोपण कैसे करें? डॉक्टर सुखदेव सिंह जो कि पूर्व कार्यकारी अधिकारी पार्क्यम उद्यान सोसाइटी कृषि वानिकी विशेषज्ञ, इन्होंने बहुत ही विस्तार में अच्छी जानकारी दी और इनसे बातचीत कर रहे थे रूप सिंह डाकर।
3: बिल्कुल यमुना बहन, बहुत अच्छी जानकारी थी। जब बात पेड़ पौधों की हुई है, बरसात के मौसम की हुई है और पर्यावरण की हुई है, तो एक इसके ऊपर रागनी तो बनती है। तो हम मनोरंजन कराते हैं अपने भाई बहनों का, सुनवाते हैं श्रीपाल मार्शल से ये रागनी।

0: और देखो जानकारी की जब हम बात करते हैं कुसुम, तो बहुत से ऐसे योजनाएं चली जाती हैं, अभियान चलाए जाते हैं जिसका फायदा हम सभी को उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल, बात करें समग्र शिक्षा अभियान की तो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है यमुना बहन। ये योजना पूर्व प्राथमिकता से लेकर 12वीं तक जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशन और सार्वभौमिक सुधार में सुधार के लिए बनाई गई है, ताकि बच्चों को जो उनकी जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं उनकी पूरी हो सकें। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पूर्व विद्यालय से लेकर कक्षा के 12वीं तक शिक्षा का एकीकरण हो।
0: बिल्कुल, और सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा का विलय भी इसी में किया गया, और शिक्षा में डिजिटल तकनीक को भी बढ़ावा दिया गया जिससे बच्चे डिजिटल तरीके से हर चीज़ों को सीख सकें। और एक बात और है, सभी के लिए समान अवसर और समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, पूर्व जो विद्यालय है उससे कक्षा 12वीं तक का शिक्षा का जो एकीकरण है वो भी होता है। इससे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा का विलय भी इसमें शामिल है। और अगर वित्तीय संरचना की बात करें यमुना बहन, ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकारें 40% वित्तीय सहायता देती हैं।
0: बिल्कुल, और शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो सच कहें शिक्षा कितनी जरूरी है इसी बात को बताने जा रहे हैं मनसाराम चौहान कलाकार, और इस रागनी के माध्यम से, इस उपदेश के माध्यम से कि कैसे शिक्षा बहुत जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं
1: बिल्कुल
0: मनसाराम चौहान के द्वारा ये गाया हुआ उपदेश।

कोई अनपढ़ मानस को दुनिया में ना कोई साथ लगावे। अनपढ़ औरों की विनती कर अपने काम करावे। छोटी छोटी संख्या का भी जोड़ लगाना

मुसीबत भारी, ना कोई उससे यारी चाहवे, ना कोई रिश्तेदारी। अनपढ़ के संग हेरा फेरी हो जाती गद्दारी, इसीलिए तो पढ़ना चाहिए।

0: रही है संतान को सदा पढ़ावे।
1: अभी आप सुन रहे थे मनसा राम चौहान से रागनी, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
2: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं तुषार पारसर और कार्यक्रम संयोजक हैं शिव नंदन लाल। सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा राम राम।

0: अभी आप ग्राम संसार कार्यक्रम सुन रहे थे, शाम के 7 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। अप्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम
1: राम
0: राम।
1: राम। जी हाँ यमुना बहन, हम जैसे बताते रहते हैं किसान भाई बहनों को बहुत सारी योजनाओं के बारे में, और एक ऐसी ही योजना के बारे में हम बताना चाहेंगे। एक ऐसी योजना है, जैसे कई बार जैसे हम मेहनत करते हैं लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं,
0: बिल्कुल
1: कई जो चीज़ें हमारे वश में नहीं होती या फसल रोगों के कारण खराब हो जाती है, तो किसानों को वित्तीय सहायता और मुआवजा दिया जाता है। तो ये
0: बिल्कुल
1: योजना है फसल बीमा योजना।
0: बिल्कुल, आज इसी पर विस्तार से जानकारी दिलवाएंगे हम किसी से। लेकिन ये भी बता दें कि प्राकृतिक आपदा, कीट या रोग से नुकसान पर बीमा कवर मिलता है। बहुत सारी जानकारियां हैं फसल बीमा योजना से संबंधित, तो चलिए सुनवाते हैं आपको एक बातचीत आपदा के समय फसल बीमा योजना। शशि प्रकाश सिंह जो कि मुख्य प्रबंधक है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, तो चलिए इनसे सुनते हैं बातचीत।
2: भाइयों नमस्कार। आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कई प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें चाहे सूखा हो, अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, बाढ़ है, चक्रवात, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको किस तरीके से आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं शशि प्रकाश सिंह जी, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी नई दिल्ली में। सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये फसल बीमा योजना है, ये क्या है और इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMABY के नाम से भी जानते हैं, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में गिना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान की आय को सुरक्षित रखना, कृषि में स्थिरता लाना तथा आपदा के समय किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

0: तो फसल बीमा योजना में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनको आप कवर करते हैं?
1: इस योजना के अंतर्गत सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात, ओलावृष्टि, जल भराव, भूस्खलन, बादल के फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा कीट एवं रोगों से होने वाले फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
0: इसके अलावा बहुत से किसान भाई जो बीजों की बिजाई करते हैं, या जब फसल कट जाती है खेत से, जब उसके थ्रेसिंग होके घर ले जाते हैं, इस बीच भी नुकसान होता है, कभी बीज उनका नहीं उगता है, तो क्या ये भी कवर होता है?
1: इस योजना में यदि सरकार द्वारा अधिसूचित है और इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि निश्चित क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान बुआई नहीं कर पा रहे हैं या बुआई जो भी बुआई कर पाते हैं वो
0: जी
1: फेल हो जाती है, तो जिस राज्य में भी यदि प्रिवेंटेड सोइंग कवर यदि अधिसूचित है तो वहां भी किसान बीमा के लाभ के पात्र होते हैं।
0: इस योजना का कौन कौन से किसान भाई लाभ ले सकते हैं, कौन कौन से किसान इसके पात्र हैं?
1: अधिसूचित फसलों के लिए वो सारे किसान जो अधिसूचित फसलें उगा रहे हैं क्षेत्र में इस योजना के लिए पात्र हैं। जो लोनी किसान हैं उनका लोन अकाउंट यदि अधिसूचित फसल उगा रहे हैं तो स्वतः ही बैंक के द्वारा उनका बीमा कर दिया जाता है। जिन किसानों ने लोन नहीं लिया है, जिनका कि लोन अकाउंट नहीं है और यदि अधिसूचित फसल उगा रहे हैं, तो वो भी CSC या बैंक विजिट के द्वारा या फसल बीमा पोर्टल पर स्वतः ही आवेदन करके बीमा कवर ले सकते हैं।
0: तो निश्चित तौर पे कि जिस तरीके से आपने कहा कि स्वतः ही उसका कर सकते हैं पोर्टल पर जा करके, और कोई भी किसान अगर किसी मान लीजिए कॉमन सर्विस सेंटर CSC का नाम आपने जिक्र किया, वहाँ जाता है तो कौन कौन से कागजात डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि हमें अपने फसल का बीमा कराना है?
1: किसान को मुख्य रूप से अपनी पहचान यानी आधार कार्ड, बोई जाने वाले फसल का प्रमाण पत्र, संबंधित जमीन के दस्तावेज और बैंक पासबुक की प्रति की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वो अपना बीमा करवा सकते हैं।
0: और कोई किसान भाई अगर बीमा कराना चाहते हैं किसी फसल का, तो इसकी अंतिम तिथि क्या है?
1: सामान्यतः खरीफ के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है और रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर होती है, किंतु अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियों के अनुरूप राज्य की अधिसूचना के अनुसार अलग अंतिम तिथियां निर्धारित हो सकती हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना और राज्य सरकार के विभाग के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
0: जैसे 31 जुलाई तो निकल चुकी है, क्योंकि बहुत से किसान भाई अभी भी अपनी फसलों की बिजाई में लगे हुए हैं, तो क्या अभी कई राज्यों में किसान भाई अभी भी फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं?
1: बहुत से राज्यों में मौसम की स्थितियों के अनुसार अंतिम तिथि में परिवर्तन किए गए हैं, तो जहां भी अंतिम तिथि एक्सटेंड की गई है और अभी भी अंतिम तिथि शेष है, वहां इसकी सूचना अपने कृषि विभाग से या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर जाकर उसकी जानकारी लेकर बीमा ले सकते हैं।
0: और किसान भाइयों की जानकारी के लिए आप बताना चाहेंगे कि इनकी जो भी फसलें हैं उसका प्रीमियम क्या है?
1: खरीफ फसल के लिए निर्धारित प्रीमियम बीमित राशि का 2% है, रबी की फसल के लिए 1.2% है, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए
0: के
1: एक
0: लिए
1: दशमलव
0: दस
1: पांच
0: मिनट
1: प्रतिशत है।
0: तो अगर किसी किसान के किसी आपदा से फसल नष्ट हो जाती है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: यदि किसी भी आपदा से यदि फसल नष्ट हो जाती है और वो आपदा स्थानीयकृत आपदाओं के अंतर्गत अधिसूचित है, जैसे कि ओलावृष्टि, जल भराव, भूस्खलन, आकाशीय बिजली, इस स्थिति में किसान को 72 घंटों के अंदर कृषि रक्षक पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1447 या कृषि बीमा कंपनी के डायरेक्ट नंबर, कृषि विभाग के अधिकारियों, बैंकों या CSC के माध्यम से कृषि बीमा कंपनी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।
0: अगर इसके सूचना किसान भाई दे देते हैं तो कंपनी द्वारा कैसे आकलन किया जाता है और इसमें प्रशासन की क्या भूमिका रहे?
1: सूचना देने के उपरांत कंपनी के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि किसान की उपस्थिति में उसके खेत पर नुकसान के आकलन का सर्वे करते हैं और सर्वे के आधार पर जो भी नुकसान का आकलन होता है उसके बीमा राशि का भुगतान सारे आंकड़ों के निश्चित हो जाने के पश्चात 21 दिनों के अंदर कर दिया जाता है।
0: अब वो कैसे किया जाता है किसान को?
1: किसान का भुगतान डायरेक्ट DBT के माध्यम से उनके पोर्टल पे प्रविष्ट अकाउंट नंबर या आधार से लिंक्ड अकाउंट नंबर में कर दिया जाता है।
0: तो जितने किसान भाई उनका नुकसान होता है किसी भी आपदा के द्वारा, तो क्या सभी किसान

0: का क्लेम स्वीकार किया जाता है।
1: यदि कोई किसान स्थानीयकृत आपदा के विषय में सूचना देते हैं तो अधिसूचना में वो आपदा कवर है, तो सर्वे के आधार पे नुकसान का निर्धारण होता है तो उस किसान का भुगतान किया जाता है। सीसी के आधार पे, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पे, जहां पर भी उपज में कमी पाई जाती है उन सारे किसानों को उस बीमा इकाई में क्लेम का भुगतान किया जाता है, किंतु जहां पर भी उपज गारंटीड उपज से ज्यादा होती है वहां
0: जी,
1: पर कोई भुगतान नहीं किया जाता।
0: फिर भी अगर कोई किसान अपना देख रहा है कि फसल उसका नुकसान हुआ है और बीमा कंपनी उसका क्लेम अस्वीकार कर देती है, तो ऐसी स्थिति में किसान को क्या करना चाहिए, कहाँ सूचना देनी चाहिए या शिकायत करनी चाहिए?
1: शिकायत के लिए मुख्य रूप से कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1447 पर बीमा के दावों के सूचना के अतिरिक्त वहाँ शिकायतों के समाधान या शिकायतों की भी व्यवस्था है। शिकायत दर्ज करने के उपरांत शिकायत का टिकट जनरेट होता है जिसके माध्यम से शिकायतों को ट्रैक किया जा सकता है और उनकी शिकायतों का उपयुक्त स्तर पर समाधान किया जाता है।
0: तो उसमें कितने दिन लग जाते हैं लगभग?
1: शिकायतों के आधार पर जिस तरह की शिकायत होती है वो संबंधित बीमा कंपनी को वो शिकायत जाती है और बीमा कंपनी को 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर उस शिकायत का समाधान कर उपयुक्त उत्तर किसान तक पहुंचाना होता है।
0: अच्छा, किसान भाइयों को मान लीजिए बीमे का क्लेम लेने के लिए जरूरत पड़ती है कि उनको कौन कौन से अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए?
1: बीमा के दावे के लिए मुख्य रूप से सर्वे से संबंधित प्रति और सर्वे के दौरान लिए गए जो भी साक्ष्य हैं उनकी प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।
0: अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत से हमारे किसान भाई हैं जिनके नाम अपनी ज़मीन होती है, वो भी खेती करते हैं, और बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनके नाम खेती तो नहीं है लेकिन वो खेती करते हैं दूसरे के बटाई पे लेकर के, पट्टे पे लेकर के। क्या वो भी इस प्रधानमंत्री फसल योजना के पात्र हैं? लाभ उनको भी मिलेगा?
1: यदि किसान बटाईदार के रूप में खेती कर रहे हों और उनके द्वारा उगाई गई फसल राज्य की अधिसूचना में अधिसूचित है तो किसान बीमा करवाने के पात्र हैं। उसके लिए उन्हें अपने बताए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त जो लैंड एग्रीमेंट है जिसके आधार पर वो खेती कर रहे हैं
0: जी,
1: उसकी प्रति भी सबमिट करनी होती है, उसके आधार पर उनका बीमा होता है।
0: और क्योंकि फसल तो सभी हमारे किसान भाई लगाते हैं, खेती करते हैं, लेकिन सभी किसान बीमा नहीं कराते, उनके अंदर बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी गलतफहमियां हैं जिसके कारण वो फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेते हैं?
1: सामान्यतः बीमा के विषय में इस धारणा से भी कि हमारे क्षेत्र में इस फसल में नुकसान नहीं होता है, ये एक बड़ी सोच होती है जिसके लिए नहीं कराते हैं, किंतु आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसके विषय में हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं और वो कभी भी फसलों का नुकसान पहुंचा सकती है। और उस स्थिति में यदि आपदा के संदर्भ में ध्यान रखा जाए और सोच कर यदि कराया जाए कि ये बीमा कोई एक इन्वेस्टमेंट ना होकर आपदा से बचाव का एक जरिया, एक माध्यम है, तो बीमा कराने के लिए यदि इस सोच से किसान प्रेरित होंगे तो वो बीमा कराने के लिए अग्रसर हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सभी किसान फायदा लें, इसके लिए किसान भाइयों को अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सभी किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि वो अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और समय रहते ही अपनी फसल का बीमा करवा लें, क्योंकि आपदाएं कभी भी बताकर नहीं आती हैं। फसल बीमा कराने से उनका कृषि में निवेश, सुरक्षित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ये सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। समय पर बीमा और सही जानकारी कठिन परिस्थितियों में आर्थिक संबल प्रदान करती है और ऐसा देखा गया है कि विगत वर्षों में बहुत से किसानों की बीमा राशि उनका दावा बनने के बावजूद भी उनके खातों में अंतरण के समय फेल हो जाती है। बार बार प्रयासों के बावजूद भी उनके बैंक अकाउंट में बीमा राशि का अंतरण नहीं हो पाता है।
0: तो ऐसे में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
1: किसान भाइयों से निवेदन है कि इस स्थिति से बचने के लिए वो अपने खातों को निश्चित रूप से अपने आधार के साथ लिंक कराएं, जिससे आधार बेस्ड पेमेंट के अंतर्गत जो भी लंबित दावों का भुगतान है उनका भुगतान किया जा सके और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
0: जी, आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा के समय उसकी उपयोगिता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें विश्वास है कि यह जानकारी किसान भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वे समय रहते फसल बीमा योजना का लाभ उठाकर अपनी खेती को अधिक सुरक्षित बना सकेंगे। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपदा के समय फसल बीमा योजना का लाभ आप कैसे उठाएं, इस विषय पर शशि प्रकाश सिंह अभी जानकारी दे रहे थे, जो कि मुख्य प्रबंधक है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: तो ये तो थी जानकारी, और आप कुछ मनोरंजन कराते हैं, सुनवाते हैं। एक उपदेश कलाकार हैं शीशपाल सिंह भाटी।

0: अभी आप सुन रहे थे शीशपाल सिंह भाटी से ये उपदेश।
1: और अब कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है, जल संरक्षण के बारे में है।
0: बिल्कुल, बात कर रहे हैं हम जल संरक्षण की। तो जल संरक्षण हर एक बूंद कीमती है और ये कैच द रेन के नाम से मशहूर है। जल शक्ति अभियान जैसे प्रोमो और अभियानों के जरिए जनता से जल वर्षा संचय और भूजल स्तर को सुधारने की अपील की गई है।
1: बिल्कुल, सरकार के जो ये मुख्य संदेश है इस अभियान के तहत ही है, कैच द रेन, वर्षा के पानी का एक एक बूंद जहां गिरे उसे वहीं सहेजने का संकल्प लें। और जन भागीदारी की बात करें तो
0: बिल्कुल, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना जिसमें युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया है।
1: बिल्कुल, अमृत सरोवर की बात करें तो देश भर में जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए नए तालाबों के निर्माण की बात रखी गई है।
0: बिल्कुल, और अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के साथ पानी की बर्बादी रोकने का भी संदेश दिया गया है।
1: बिल्कुल, और कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, एक महत्वपूर्ण जल संरक्षण अभियान है। इसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसका मुख्य उद्देश्य बारिश की एक बूंद को बचाना और भूजल स्तर को सुधारना है।
0: बिल्कुल, पानी की हर बूंद का सही और प्रभावशाली इस्तेमाल करना है, भूजल व्यवस्था और जल भूतों को मजबूत करना है, छत आधारित और भूमि आधारित वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है, जल प्रबंधन के प्रति आम जनता और युवाओं में जागरूकता लाना है, यानी कैच द रेन का ये स्लोगन आम बनाना है।
1: बिल्कुल, और देखा जाए तो जो हमारा वर्षा का जल आता है उसको हम कहीं भी इकट्ठा करते हैं तो जल संचयन से एक जो हमारी विपदा होती है पानी की कमी की, वो सारी पूरी की जा सकती है। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसी बूंद बूंद से आप सागर भर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास आपका हमारा सभी का होना चाहिए।
0: जी, प्रयास छोटे ही होते हैं लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो वो ये प्रयास हमारे बड़े हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो इसी से संबंधित चलिए सुनवाते हैं आपको योगेंद्र निमचाना की आवाज में ये उपदेश, जल संरक्षण क्यों जरूरी है।

0: जी हाँ, जल संरक्षण बहुत ज़रूरी, इसके बिना नहीं जिंदगानी। अभी आप सुन रहे थे उपदेश योगेंद्र निमचाना से।
1: और अब आइए सुनते हैं एक संदेश।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम।

0: 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: आगामी कार्यक्रम के बारे में भी हम बता देते हैं। आगामी कार्यक्रम की जानकारी में आप सुनिएगा कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी कल 7:05 से लेकर के 7:35 तक। और साथ साथ ये भी कहें कि देखो कुसुम मौसम बदल रहा है और बारिश का मौसम है, तो अपने पशुओं का भी देखभाल करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, बरसात के मौसम में अपना और साथ ही साथ पशुओं का भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में कीचड़ नमी हो जाती है, मक्खी मच्छर और संक्रमण से बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पशुओं के रहने के स्थान को सूखा और साफ रखना ज़रूरी होता है, और यमुना बहन उन्हें साफ और उबला या छना हुआ पानी पिलाना भी चाहिए, तथा जैसे इस तरह के कई रोग हो जाते हैं जैसे थनैला और पेट में कीड़ों से बचाने के लिए
1: खुरपका हो जाए
2: जी, तो समय पर डॉक्टर की सलाह और दवाएं और टीके भी लगवाते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और सच कहें तो इसी जानकारी के साथ साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे कार्यक्रम कृषि जगत से। तो सभी सुनने वाले किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम राम, राम, राम। और जिस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर
2: और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
1: सभी सुनने वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को पुनः राम राम, राम, राम।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा ये सब?
5: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
4: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
5: अरे ये कैसे रह गया?
4: पैसे गए?
5: नहीं नहीं नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
6: दादू ये
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सही कह रहा है।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कल त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समापन। मुख्यमंत्री ने दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को अपने पुराने उपयोग योग्य कपड़े दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनका पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग की जा सके। दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर अर्पण दान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों के लिए इसमें भागीदारी करना और अधिक सुविधाजनक होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राजधानी में सतत अपशिष्ट

0: प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने पुराने और उपयोग योग्य कपड़े अर्पण केंद्रों पर दान कर इस जनभागीदारी अभियान का हिस्सा बने।
1: आज का ये अर्पण वस्त्र केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सब की साझी जिम्मेदारी है और मैं ये मानती हूँ कि इस जिम्मेदारी का निर्वाह हम सब लोग मिलके करेंगे। अपने घर से जो भी आपको कपड़ों का सामान नजर आए, भगवान जी के वस्त्र दें तो वो ले जा करके अर्पण केंद्र पे दीजिए और उस समाज को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, जिससे किसी बहन को रोजी रोटी भी मिलेगी और समाज से इस तरह का जो अपविष्ट है, जो गंदगी है, वो भी खत्म होगी।
0: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली सचिवालय में इस बैठक का उद्देश्य राजधानी को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार राजधानी के लिए ऐसा हरित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रही है जहां उद्योग, तकनीक और पर्यावरण एक दूसरे के सहयोगी बने। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि मजबूत उद्योग और सुरक्षित पर्यावरण दोनों साथ साथ आगे बढ़ें, तभी दिल्ली का भविष्य और बेहतर बनेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के कृषि मंडियों के पुनर्विकास और विभिन्न मंडियों के प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गाजीपुर, नरेला, आईएफसी गाजीपुर आदि से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया और मंडियों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी ली गई। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में गाजीपुर में लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे आधुनिक पोल्ट्री मार्केट की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का लगभग 85% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस आधुनिक पोल्ट्री मार्केट में 100 थोक व्यापारियों की दुकानें और 120 प्रोसेसिंग यूनिट विकसित की जा रही है। गाजीपुर फल, सब्जी और फूल मंडी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मंडी में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए 200 मीटर लंबी बाईपास ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मंडी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से आवारा पशुओं को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में नरेला अनाज मंडी में 2 अतिरिक्त स्टील शेड विकसित करने के प्रस्ताव और गाजीपुर में इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित आधुनिक फूल मंडी परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की कृषि मंडियां किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इन मंडियों को समय की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुव्यवस्थित और बेहतर आधारभूत ढांचे वाली मंडियां न केवल व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाएंगी बल्कि पूरी कृषि विपणन व्यवस्था को भी अधिक समक्ष बनाएंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप से।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। एक रिपोर्ट।
3: उत्कलमणि के नाम से प्रसिद्ध गोप बंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के पुरी में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता, शिक्षा के प्रसार, समाज सेवा और गरीब तथा वंचित वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित गोप बंधु दास ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और मानवीय सहायता कार्यों का भी नेतृत्व किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि गोप बंधु दास ओडिशा की एक महान और प्रेरणादायक विभूति हैं।
4: It's a big moment for the people of Odisha.
5: ये उड़ीसा के साथ साथ पूरे देश के लोगों के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर है। हम सभी जानते हैं कि उत्कलमणि गोप बंधु दास उड़ीसा के एक महान और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्होंने पत्रकार, कवि और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने उड़ीसा और देश के लोगों के लिए ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
4: For the people of Odisha and beyond.
3: दिल्ली में गोप बंधु दास की प्रतिमा लोक सेवक मंडल की ओर से स्थापित की गई है। इस संगठन की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। राष्ट्रीय राजधानी में उनकी प्रतिमा का अनावरण स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दी गई महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। विशाल दास की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए।

0: सिंह।
1: दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में आज अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। अस्पताल में उन्नत आपातकालीन विभाग के साथ धर्मशाला और नेत्र रोग विभाग में स्थापित अत्याधुनिक उपकरण सहित अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि चिकित्सक समाज में भगवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहीं स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि अस्पताल निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है और यहां के चिकित्सकों की विशेषज्ञता, आधुनिक मशीनें तथा सुदृढ़ आधारभूत ढांचा हजारों मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करा रहा है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज उत्तरी दिल्ली स्थित नजफगढ़ नाला पर नए पैदल पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये नया फुटब्रिज गुडमंडी, राजपुरा, रूपनगर, मुखर्जीनगर और यमुना मार्ग को आपस में जोड़ेगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली सरकार की नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार के दौरान पुलों का कोई व्यापक सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण संरचनाओं की समय पर जांच नहीं हो सकी। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के सभी पुल, फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज का व्यापक ऑडिट करा रही है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह राजधानी में सुरक्षित, टिकाऊ और जन केंद्रित आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में कल रात एक मकान की छत गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने दोनों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान तलाशी अभियान भी चलाया गया और मलबे में किसी के भी होने की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करें, घटना की गहन जांच सुनिश्चित करें और सभी आवश्यक कार्रवाई करें। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को मुंडका से गिरफ्तार किया है और उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी आबकारी अधिनियम के दो मामलों में शामिल रहा है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने एक महिला शराब तस्कर को बवाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध शराब बरामद की है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली महापौर कार्यालय को आज सुबह एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई। ये आठवीं बार है जब कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए महापौर कार्यालय द्वारा तत्काल सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ये मामला विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत महिला पहलवानों द्वारा सिंह के महासंघ प्रमुख रहते हुए दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा था। ये मामला 2023 का है, जब महिला पहलवानों ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर श्री सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता तथा कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्र ने सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रत्येक जीवन शिवमय हो, प्रत्येक परिवार सुखी रहे और राष्ट्र निरंतर वैभव के पथ पर अग्रसर हो। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी पदक विजेताओं को भी बधाई दी।
0: हमारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीत करके दिल्ली को दिया, भारत को दिया, और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये बात कही है, केवल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि ऐसे गेम्स की मेजबानी भी करनी है। मुझे खुशी है कि दिल्ली ने ये मेजबानी बड़े मन से की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों के ग्लासगो में यादगार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। और दिल्ली में आज दिनभर मौसम सामान्य रहा। राजधानी के कई क्षेत्रों में दोपहर में हल्की बारिश हुई। अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़े के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
3: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
2: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
4: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट।
5: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 8:20। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म का नाम है लक्ष्मी, और इस गीत को आवाज दी है रैपर विरूस ने, और गीत रचना और संगीत दिया है उल्लू मानती ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

इंद्रप्रस्थ चैनल के गीत मालिका कार्यक्रम में अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म का नाम कश्मीर की कली, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी, और गीत रचना थी SH बिहारी की, और संगीत दिया था OP नैयर साहब ने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं शान और आमिर खान को, फिल्म का नाम है तारे जमी पर। संगीत निर्देशक हैं शंकर हेसॉन लॉय।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है बरसात और गीत रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। गीत रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म आराधना में। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है SD वर्मन ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं असित देसाई, हेमा देसाई और अलाप देसाई को फिल्म शिवोहम में शिव तांडव स्त्रोत के साथ। संगीत दिया है अस्ति देसाई ने, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत शिव तांडव स्त्रोत।

0: और आपकी कसम फिल्म में किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ आज का ये गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी में और फिर 9 बजे अंग्रेजी में और 9:15 पर उर्दू में समाचार सुन पाएंगे। तो कुछ ही पलों में प्रतीक्षा करें हमारे अगले कार्यक्रम की, समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब

0: मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
1: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
2: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
4: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
5: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
7: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
7: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
8: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो

0: BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him. The BJP MP also accused Meta, YouTube and X of failing to adequately address issues related to their algorithms and content moderation. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today held a meeting with Uzbekistan's Foreign Minister Bakhtiar Saidov in Delhi. He highlighted that bilateral relations between India and Uzbekistan have expanded over the years and span a diverse range of domains today.
1: We share a commonality of views on international and regional issues, particularly when it comes to terrorism, extremism, and drug trafficking. We cooperate in a number of bilateral and multilateral forums. We deeply appreciate that the government and people of Uzbekistan have taken a strong stand on combating terrorism in all its forms and manifestations. Both of us have shown zero tolerance towards sanctuaries and cross-border terrorism.
0: Mr. Saidov also called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. President Draupadi Murmu today said education is the foundation of character building, social transformation and nation building. She called upon universities to nurture ethical, skilled and socially responsible citizens. The president inaugurated the Jagatguru Kripalu University at Cuttack in Odisha today. President Murmu said educational institutions will play a decisive role in achieving the goals of Viksit Bharat 2047 and a Viksit Odisha 2036. The situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK worsened overnight as protesters refused to disperse and security forces opened fire on demonstrators. Reports from POJK said the security forces launched a midnight crackdown on protesters with gunfire reported in Rawalkot. An intelligence bureau official said the reported gunfire came as scores of women and children joined the ongoing protest. Many women and children have remained at the protest site for the past 50 days, with dozens more joining them yesterday. People from across POJK have joined the agitation, which is now spreading rapidly across the region. According to Human Rights Council of POJK, as of yesterday, a total of 80 fatalities have been documented. Iran today said there are no talks underway with the United States and no plans for any meetings, contradicting U.S. President Donald Trump, who had said negotiations through intermediaries were scheduled for today. Earlier, speaking to reporters aboard Air Force One, Mr. Trump said diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, and Iran had led him to halt what was originally planned as a massive attack. The India Meteorological Department or IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Heavy rainfall is also expected in Arunachal Pradesh, Nagaland and Bihar over the next 2 days and in Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. Young cyclist Harshita Jhakhar rode into history books by becoming the first Indian woman to be a part of the Tour de France Femmes in Switzerland. The 19-year-old led a pack of 8 talented cyclists from Afghanistan, Algeria, Chile, Ethiopia with 2 riders, Namibia and Uganda during the ceremonial start at stage 2 of the grueling race yesterday. The event started on 1st of this month in Lausanne and will end on the 9th August in Nice. In a bilingual live phone-in program, Public Speak tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on cyber fraud and cyber security, safeguarding the digital citizen. During the program, listeners can ask questions on telephone numbers 011-2371-7117, 011-2371-7106. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar. BJP retains Manjalpur in Vadodara, Gujarat. Congress keeps Dathia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी, छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिमनी इंतखाबात में जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मुंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। कर्नाटक के वजीर आला डी के शिवकुमार ने 19 नए वुजरा शामिल करके काबीना में तौसी की है। आसाम, मेघालय, जेली, हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पीओजेके में रात में सूरत हाल अबतर हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया था। नौजवान साइकिलिस्ट हर्षिता झाकर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनकर पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इन 37 जजों में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई के महीने में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया था। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क्यादत में रिफॉर्म यानी इस्लाह, परफॉर्म यानी कारकर्दगी और ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव का मंत्र मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जनाब मेघवाल ने कहा कि अदालती शोबे में जारी इस्लाही अमल में यह बिल अहम कदम है।
3: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
2: इससे पहले अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ मामलों पर एहतजाज के दौरान लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फा सवाल चलाने की कोशिश की, तहम अपोजिशन अराकीन ने तलबा के एहतजाज के दौरान की गई मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन के कुछ अराकन की जानिब से जानबूझकर रखनांदाजी करने पर तश्वीश का इजहार किया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आराई की वजह से आज एक बार फिर रखना पड़ा। लोकसभा को 3 मरतबा जबकि राज्यसभा को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवाल नहीं चल सका। तहम शोरगुल और हंगामा आराई के दौरान लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
2: इस दौरान शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय शुमारियाती इदारा बिल 2026 पेश किया। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर बही खाता शवाहिद बिल 2026 पेश किया। दूसरी जानिब राज्यसभा ने हंगामा आराई के दौरान माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस बिल का मकसद माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट कानून 2006 में मजीद तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद

0: ने आज बेंगलुरु के राजभवन में 19 कानून साजों को ओहदे का हलफ दिलाया। वजीर आला डी के शिवकुमार, जिन्होंने 3 जून को अपने 13 वजीरों के साथ वजीर आला का ओहदा संभाला था, को काबीना की तौसी के लिए 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा। इस तौसी के बाद कर्नाटक काबीना अराकीन की तादाद बढ़कर 33 हो गई। कुछ कानून साजों की जानिब से काबीना में शामिल न किए जाने पर मायूसी जाहिर करने पर वजीर आला डी के शिवकुमार ने कहा कि हर किसी को जगह देना मुमकिन नहीं है। वजीर आला ने इन कानून साजों को मुस्तकबिल में मौका देने की यकीन दहानी कराई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए वजारत दिफा की फौजी और सिविलियन शाखों के दरमियान वसी तर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 85वें मुसल्ला फौज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज के दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर दिया कि इससे उभरते हुए सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजों पर मौसर तौर से तवज्जो मरकूज की जा सकेगी। वजीर दिफा ने कहा कि फौजी और सिविल सर्विसेज दोनों मुल्क सबसे पहले के एक अहद पर यकीन रखते हैं, तो जब मकसद कोई वाहिद हो तो निजाम का हर एक जुज्व कौमी इस्तेहकाम में तब्दील हो जाता है।
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: भारतीय रेलवे ने इस साल जुलाई के महीने में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में माल बर्दारी में 9% की नमो रिकॉर्ड की है। जुलाई 2026 के दौरान रेलवे ने 141.3 मिलियन टन की माल बर्दारी की, जो कि पिछले साल जुलाई में 129.7 मिलियन टन थी। ये कारकर्दगी मईशत के कलीदी शोबों में पायदार मुतालबे, नीज माल बर्दारी की लॉजिस्टिक और ऑपरेशन जाती कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों की अक्कासी करती है। ईरान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तर्दीद करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए आज ईरान के साथ मुजाकरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को रोक दिया। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। मकाई ने मजीद कहा कि वजीर खारजा अब्बास अराकची को छोड़कर, जो मजहबी दौरे पर इराक गए हैं, के अलावा सभी ईरानी मुजाकरातकार फिलहाल मुल्क में ही मौजूद हैं। जनाब मकाई ने मजीद कहा कि फिलहाल सिर्फ ओमान के साथ आबनाए हुरमुस के इंतजाम से मुतालिक मुजाकरात जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक ऐसी ही सूरत हाल के कायम रहने की पेशगोई की गई है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 2 से 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र, उड़ीसा और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में जुमेरात तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और शिमाल मशरकी खित्ते में कल गरज चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सूरतेहाल रात में अबतर हो गई, क्योंकि एहतजाजियों ने तितर पितर होने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी। POJK से आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आधी रात में एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें रावलकोट में गोली चलने की खबर दी गई है। नौउम्र भारतीय साइकिलिस्ट हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की। 19 साल हर्षिता ने कल दूसरे मरहले के रस्मी आगाज के दौरान सब्र आजमा रेस में अफगानिस्तान

अल्जीरिया, चिली, एथियोपिया के दो साइकिलिस्ट, नामीबिया और युगांडा के खिलाड़ियों समेत 8 होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिमनी इंतखाबात में जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु

और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। दो दिवसीय ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह बैठक का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेष विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि की भागीदारी की उम्मीद है। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। कल सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने सूचित किया कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को भ्रामक 100% दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिनमें शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही मार्मिक और बेहद खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे, बहुत ही शानदार गीत। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है बहुत बड़ा ही प्यारा और बेहद खूबसूरत गीत है, और ये गीत अपने आप में बहुत ही अनमोल है। फिल्म जन्म जन्म के फेरे, जो 1957 प्रदर्शित फिल्म रही, जन्म जन्म के फेरे ये टाइटल सॉन्ग है, और गीत मुक्ति फिल्म्स के बैनर तले ये रचना है और संगीत से सजाया है SN त्रिपाठी ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल रचना। जैसे कि हमने बताया कि जन्म जन्म के फेरे टाइटल सॉन्ग है, मोहम्मद रफ़ी साहब और साथियों की आवाज़ में शानदार रचना। और ये फिल्म 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत मुक्ति आर्ट्स बैनर तले के हैं और संगीत से सजाया है एस एन त्रिपाठी ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की, और ये गीत भी बहुत ही शानदार आ रहा है, ऑल टाइम फेवरेट खूबसूरत गीत है, अपने आप में बेहद खूबसूरत है, ओ बसंती पवन पायल, बहुत ही प्यारा नगमा।

देश में गंगा बहती है फिल्म से बेहतरीन रचना। ये फिल्म 1960 प्रदर्शित फिल्म रही है और आवाज लता मंगेशकर की है और गीत शैलेंद्र के और संगीत से सजाया है इस शानदार रचना को शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, बहुत ही शानदार, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में शानदार रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी बहुत ही सुंदर है और बेहद खूबसूरत है। जी हाँ, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो। फिल्म कुंदन से, और माफ कीजिएगा, खानदान से। ये फिल्म 1965 प्रदर्शित फिल्म रही है, बहुत ही शानदार फिल्म रही है। गीत राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत से सजाया है रवि ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। इसी के अंतर्गत बहुत ही शानदार शानदार खूबसूरत गीत अभी आपने सुने। गीत सुनहरे कार्यक्रम की सेकंड लास्ट खूबसूरत रचना आ रही है एक बड़ी ही प्यारी लाजवाब गीत के माध्यम से। तुम इश्क की महफिल को, जी हाँ, तुम इश्क की महफिल को। फिल्म का नाम है साज और आवाज। मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले और साथ दे रहे हैं उनके साथी। ये खूबसूरत लाजवाब गीत आ रहा है साज और आवाज। 1966 प्रदर्शित फिल्म है। गीत SSI फिल्म्स के बैनर तले है और संगीत से सजाया है नौशाद साहब ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम और बेहद खूबसूरत अनमोल रचना।

जी हाँ साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। गीत सुनहरे के अंतर्गत एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचना अभी आपने सुनी, और गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान

की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्दीधारी और नागरिक सेवाएं दोनों ही राष्ट्र सर्वोपरि के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। जब लक्ष्य एक ही होता है तो व्यवस्था का प्रत्येक तत्व राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिले चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर हैं, जहां 380 गांव और 14,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न है। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत आ रहा है। जी हाँ, गीत बहार के अंतर्गत बहुत ही शानदार खूबसूरत रचना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आ पाए। बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना।
1: कदम चूम लूं या के आंखें

0: जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत कार्यक्रम। जी हाँ, बहुत ही प्यारा कार्यक्रम रहा है और गीत बहार के अंतर्गत बहुत ही शानदार, एक से एक खूबसूरत, चाहे वो गजल रूपी हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो कव्वाली हो, हर प्रकार की जो विधा थी गीत संगीत की, उसी के अंतर्गत बहुत ही शानदार बेहतरीन रचनाओं का समावेश आज आपने बांधा और आपने सुना। बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। 3 बजने को हैं और अब गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 3 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों

मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा, भारत उज्बेकिस्तान सरकार और वहां की जनता द्वारा आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति से निपटने के लिए उठाए गए कड़े रुख की सराहना करता है। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब ₹25.50 प्रति लीटर होगा, जबकि एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर ₹22 प्रति लीटर कर दिया गया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Assembly by elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. The central government has devised a special additional excise duty on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel, ATF. The government has notified the new rates, saying that the export duty on diesel will now be 25.5 rupees per litre, including 1.5 rupees road and infrastructure cess, while the export duty on ATF has been raised to 22 rupees per litre. Meanwhile, the export duty on petrol has been increased to 3.5 rupees per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect from yesterday. However, there is no change in the existing excise duty on petrol and diesel meant for domestic consumption. Union Home Minister Amit Shah has said that Indian athletes have scripted joyous history by making India the fourth highest medal-winning nation at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, Mr. Shah said that this meteoric success scales to an even greater height as India now officially takes over as a proud host nation of the CWG 2030 to be held in Ahmedabad. The minister congratulated every athlete and all citizens on this moment of double delight. He said, India takes a bow in Glasgow and assumes charge of Ahmedabad 2030 Commonwealth Games. And the India Meteorological Department IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 3:10 और 10 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम गीत गजल का। तो आइए, आज के कार्यक्रम गीत गजल में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गजल। जी हाँ, शानदार गजल के साथ शुरुआत कर रहे हैं और ये गज़ल बहुत ही खूबसूरत है और अनमोल गज़ल है। गज़ल की बात अगर हम करें तो वाकई गज़ल एक सुकून देने वाली गज़लें होती हैं, दिल में, दिल के बहुत करीब होती हैं सुंदर खूबसूरत गज़लें। जी हाँ, गज़ल का मूड बिल्कुल अलग होता है। प्यार लगता है, मोहब्बत आती है, आत्मीयता आती है और बस गीत या फिर गज़ल जब आप सुनते हैं तो वाकई एकदम रूह तक बस जाती हैं बेहतरीन रचनाएं। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल के अंतर्गत शानदार रचना। ये बेहतरीन गजल जो आवाज है उनकी, जी हां, चित्रा सिंह की आवाज में बहुत ही शानदार रचना है, जिंदगी तुझको जिया है हमने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार गजल।

0: और पंकज उदास की इसी गज़ल के साथ आज का गज़ल गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पारसाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं तालवादक कचेरी से कचेरी वादन। कलाकार हैं येला वेंकटेश्वरा राय, ताल है आदि।

अभी आप सुन रहे थे येला वेंकटेश्वरा रॉय से ताल वाद्य काचेरी वादन, जो ताल आदि में निबद्ध था। इसी के साथ आज का कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म अब यहीं संपन्न होता है। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा उष्टासन और योग से संतुलित जीवन। प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर हिमानी श्योखन, योग विशेषज्ञ। सुबह 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे नकुल मल्होत्रा का गायन राग ललित में।

सुबह 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10 जिसमें आप सुन सकेंगे रीता स्वामी चौधरी के भजन, और सुबह 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा। सुबह 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे अमीन खान का गायन राग मियां की तोड़ी में।

0: सुबह 9:15 पर हमारा विशेष कार्यक्रम होगा विज्ञान पत्रिका, जिसके अंतर्गत हम आपको कोलकाता के स्थापना के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे होने पर संस्थान के कार्यों और उपलब्धियों पर जानकारी देंगे। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे, अध्यक्ष INSA, पूर्व महानिदेशक CSIR, पूर्व सचिव DSIR। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे दिलीप झा। मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:30 और दिन में 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10 और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत 11:30 पर आप सुनेंगे मोहम्मद यूनुस वारसी से वायलिन वादन राग शुद्ध तरंग सारंग में। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। यह सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा कल नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति संबंधी चिंताओं के चलते RBI द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह विदेशी मुद्रा विनिमय में और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता ईरान के लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम

0: EWF Super 300 tournament beginning today at the Asan Yisun-sin Gymnasium in Asan, South Korea. The tournament will run until 9th of this month. All eyes will be on 17-year-old Tanvi Sharma, who enters the tournament after winning her first BWF World Tour title at the Taipei Open. Tanvi will lead India's women's singles campaign. And the Indian Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. And that is the end of this news bulletin.
1: जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: समय हुआ है 5:10 और 50 सेकंड श्रोताओ आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम आओ योग करें योगा फॉर वेलनेस जिसमें आज का विषय है उष्टासन और योग से संतुलित जीवन प्रस्तुत करता है योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी शोखन

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्धऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग।

किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं